फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक

0: क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
3: बात मध्य युग की है। एक राजा था, बहुत वैभवशाली और ऐश्वर्यवान। विशाल महल था, सैकड़ों हाथी घोड़े आदि थे। विलास और

0: की सभी वस्तुएं एकत्र की गई थी महल में। अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल थे। करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास। उसके खजाने में सोने की लाखों मोहरें थीं। हीरे और मोतियों का तो भंडार था। सब कुछ होते हुए भी उसे हर समय ऐसा अनुभव होता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह भीतर से बहुत अशांत था। वह मानसिक अशांतियों से घिर गया था। मानसिक अशांति के कारण वह हमेशा बेचैन रहता था। उसने बड़े बड़े धर्मचारियों, पुरोहितों, वैद्यों और विद्वानों को बुलवाया और उनसे मानसिक शांति प्राप्त करने का उपाय पूछा। किसी ने कहा, और संग्रह कीजिए संपत्ति का। राजा ने प्रजा को लूट लूट कर और धन संग्रह किया, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। किसी ने कहा कि तीर्थ यात्रा कीजिए तथा बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कीजिए। राजा ने वैसा ही किया, फिर भी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। किसी ने सलाह दी कि हर दिन शिकार खेलिए। राजा ने हजारों जंगली पशुओं का शिकार कर डाला, पर उन्हें शांति कहीं नहीं मिली। राजा हमेशा अशांत रहता था, ऐश्वर्य और वैभव के बीच अशांत। एक दिन भ्रमण करते हुए संत कबीर साहब उस नगर में पहुंच गए। किसी ने राजा को सलाह दी कि आप संत कबीर से मानसिक शांति का उपाय पूछिए, क्योंकि वे महान संत तथा सिद्ध दार्शनिक हैं। राजा चले गए संत कबीर के पास। महाराज, मेरे पास सब कुछ है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, महल, सेना, हाथी, घोड़ा आदि आदि, पर मेरे हृदय में शांति कहीं नहीं है। मैंने तीर्थ यात्राएं की, धार्मिक अनुष्ठान किए तथा और भी धन संग्रह किया, पर मुझे शांति नहीं मिली। मैं शांति के लिए तड़प रहा हूँ। क्या कारण है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अशांत रहता हूँ, और क्या कारण है कि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपके चेहरे में शांति और संतोष का सागर लहरा रहा है? मेरा सारा धन आप ले लीजिए और बदले में आप मानसिक शांति दे दीजिए। संत कबीर ने कहा, धन, वैभव और ऐश्वर्य से शांति नहीं मिलती। यदि मिलती भी है तो वह क्षणिक रहती है। सच्ची शांति और सच्चे संतोष का रहस्य ही अलग होता है। मानसिक शांति खरीदी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। राजा ने पूछा, महाराज बताइए ना वह मार्ग जिसमें मैं मानसिक शांति अर्जित कर सकूं? संत कबीर ने राजा से पूछा, वह आम का वृक्ष देख रहे हो, कितना हरिया रहा है, लहरा रहा है, आनंद से झूम रहा है। कितना आनंद है उसके हृदय में, जानते हो उसमें आनंद और शांति का रहस्य? राजा ने कहा, मुझे नहीं मालूम। संत कबीर ने कहा, सुनो, वृक्ष कभी अपने लिए नहीं जीता। वह अपना फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों को बांट देता है। वह दूसरों के सुख के लिए जीता है, यही उसकी शांति और उसके सुख का रहस्य है। लिए जीता है, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। क्या आपने दूसरों के सुख के लिए जिया है? महाराज, मैं तो राजा हूं, सब मेरे सुख के लिए जीते हैं, मैं दूसरों के सुख के लिए कैसे जी सकता हूं? संत कबीर ने कहा, बस यही कारण है कि तुम मानसिक अशांति की आग में जल रहे हो। ये जो दूसरों के लिए जीता है वही मानसिक शांति पाता है। उस सरिता को देखिए, किलकती फुदकती आगे बढ़ रही है, कितना आनंद है उसके पास। मालूम है क्या कारण है उसके आनंद का? ये जीती है, अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, संग्रह नहीं करती, वह सब कुछ लुटा देती है, दूसरों को सदैव शीतल करती है, इसलिए सदैव आनंदित रहती है। संत कबीर ने संत धर्मदास की ओर संकेत करते हुए बताया, देखिए उन संत को, कितनी शांति है उनके चेहरे पर, कितना उल्लास है उनके माथे पर, कितना आनंद है उनके हृदय में। उन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर परमार्थ के लिए जीना सीख लिया है। जो दूसरों के लिए जीता है, जो संग्रह नहीं करता है तथा जो परमार्थ को ही परम धर्म मानता है, वही सुखी रहता है, उसे ही मानसिक शांति मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे हरिओम शरण द्वारा गाए भजनों को।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए

मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं हरिओम शरण द्वारा गाए भजनों को।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

0: भक्ति संगीत की कार्यक्रम वंदना में आज आपने सुना हरिओम शरण द्वारा गाए भजनों को, और इस भजन के साथ ही संपन्न होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता। वार्ताकार है समीउल्ला खान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धर्मजयगढ़।
1: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उन पोषक तत्वों का पूर्ति हम अपने भोजन से करते हैं, और हमारे भोजन में वही पोषक तत्व हमारे शरीर तक पहुंचते हैं जो अपने खेतों में हम जिनका समावेश करते हैं। तो बात आती है कि वो पोषक तत्व जो होने चाहिए खेतों में, और खेतों के माध्यम से होते हुए पोषक तत्व पहुंचने चाहिए हमारे शरीर तक। तो आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्य प्रकार के पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश पौधों के लिए। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा जो हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकल इत्यादि बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और सारे पोषक तत्वों का एक हमारे पौधों के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, वनस्पति वृद्धि, पुष्पन, फलन, तो इन सभी स्थितियों में अलग अलग न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अमूमन किसान भाई हम एक गलती करते आते हैं, हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के लिए तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जैसे मैंने बोला कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, और बहुत भांति भांति प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो वो हम उन पर ध्यान नहीं देते, और सीधे हम यूरिया, DAP या इत्यादि पोषक तत्वों के स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं। भूमि में अंधाधुंध उन्हीं तत्वों का समावेश करते हैं। इससे होता क्या है, अस्थायी तौर पर हमारा पौधा है हरापन दिखाता है, उत्पादन देता है, लेकिन उसके प्रोड्यूस में, उस उत्पाद में अगर हम धान से चावल बनाते हैं, दाल उत्पादन करते हैं, तो उसमें फाइबर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, सेलेनियम

0: और इत्यादि जो चीजें होनी चाहिए क्या वो होती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जो खा रहे हैं, हमारे बॉडी में जो हार्मोन का एक समुचित फ्लो होता है विभिन्न अवस्थाओं में, तो वो हार्मोन का फ्लो क्या हमारे भोजन से प्रभावित और प्रबंधित हो रहे हैं? आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में शुगर, बीपी और बहुत से प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। इसका कारण क्या है? हम वर्कआउट करते हैं, हम अपने नियमित जीवन शैली को अपनाते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद भी हम भोजन भी ले रहे हैं, तो उस थाली में वो चीज हमारे बॉडी को क्यों नहीं पहुंच रही है? इसी का मैं आप लोगों से एक चर्चा कर रहा हूं कि हमारे खेत में अगर पोषक तत्व तो सही होंगे तो हमारे शरीर या हमारे थाली पे वो पोषक तत्व तो सही तरीके से पहुंचेंगे, अन्यथा ये संतुलन और ये समीकरण बिगड़ेगा, तो इसके दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं तो यूरिया है हमारे बीच में, वायुमंडल से जो बारिश होती है हवा है हमारे बीच में, उसके अलावा हम और तरीके भी आजमा सकते हैं, जैविक खाद के तौर पे, हरी खाद के तौर पे, मिट्टी के स्ट्रक्चर, मिट्टी के टेक्सचर को सुधारें, हवा का संचार बढ़ाएं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसमें ग्रोथ बढ़ाएं, हम अपने माइकोराइजा, राइजोबियम इत्यादि का समावेश करें, ताकि जो भोजन हम उगा रहे हैं, अब अपने खाने के लिए ही तो उगा रहे हैं, और अगर वो हम अपने थाली पे वो पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे लिए वो खेती बहुत फायदेमंद नहीं होगी, और एक समय के बाद हमको पुरानी पद्धति पर लौटनी पड़ेगी, मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग कर रहे हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर हमारे उत्पाद में केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई दवा नहीं होना चाहिए, किसी रेजिडुअल या कोई अवशेष नहीं होने चाहिए। अगर हम उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज है वह विवादित होंगी और हमारा एक्सपोर्ट खराब होगा। तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने उर्वरकों के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान दें, मिट्टी को विभिन्न प्रकार के उर्वरक के माध्यम से उर्वरक दें, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रखें, फसल का चक्रण भी करें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगाएं, कुछ समय के लिए मिट्टी को रेस्ट भी दें। हम ये छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और ये पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे, खेत भी हमारा सही रहेगा, फसलों का व्यवहार भी सही रहेगा और एटलीस्ट हमारे समाज का एक सेहत भी सुधरेगा। तो ये मेरा एक संदेश है, हम सभी मिलकर इसका पालन करेंगे और अपने फसलों के उत्पादन को सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता। वार्ताकार थे समीउल्लाह खान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धर्म जयगढ़। और इसके साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 100.7 MHz पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही देर में 6:40 पर आप सुन सकेंगे रामचरित मानस गान। देश गान का वक्त होगा 6:50 पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे 6:55 पर। 7:00 हिंदी में समाचार, ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। झरोखा आप सुनेंगे 7:35 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा अटल पेंशन योजना। बाजे मंदर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:45 पर। पुनः कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप पा सकते हैं 7:55 पर और 10:00। समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8:00। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकेंगे, ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन सकेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 9:55 पर, पुनः 11:55 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमारे गोट। पॉप टाइम का वक्त होगा 5:10 पर। युवा श्रोता का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी ड्रग्स और नशीले पदार्थों से बचे, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। साथ ही आप सुनेंगे घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम संबंधी जानकारी में बस इतना ही। पुनः आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे 7:55 पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 52। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर एवं कविता कृष्णमूर्ति। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहाँ शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिव जी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्व मोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिव जी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर एवं कविता कृष्णमूर्ति। इसी के साथ रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:50 हुए, लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। 7:00 में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। श्रोता साथियों, सुबह की चाय का मजा लीजिए खूबसूरत से इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की, लक्ष्मीकांत बेरलाल का संगीत है। सुनिए फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत की शब्द रचना की थी जावेद अख्तर ने, शिव हरि का संगीत था।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। ये गीत 1875 सात

0: नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने, सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्तों ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, West Bengal की हुगली जिला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 के आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनिए फिल्म सुहाग से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। इस गीत की शब्द रचना की है शैलेंद्र ने, आनंद बख्शी का संगीत है। सुनिए फिल्म सुहाग का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुहाग, फिल्म का गीत जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। शैलेंद्र ने शब्द रचना की थी आनंद बख्शी और इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, शैलेंद्र, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का स्वर था। इसी के साथ संपन्न होता है चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

झरोखा सुन रहे सभी श्रोता साथियों को डिडनेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात और कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी का सफर बड़ा दिलचस्प होता है। बचपन, युवावस्था, जिम्मेदारियां, सपने, करियर और फिर एक ऐसा पड़ाव आता है जहां इंसान चाहता है कि थोड़ा सुकून मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले। लेकिन सुकून तभी मिलता है जब भविष्य की तैयारी पहले से की गई हो। दोस्तों, अचानक से भविष्य तो नहीं बनता है, उसे हमारी आज की सोच और आज की हुई बचत ही बनाती है। और इसी सोच को मजबूत करने के लिए भारत सरकार लेकर आई

अटल पेंशन योजना जो 9 मई 2015 को शुरू हुई। इस योजना का शुभारंभ कोलकाता से किया गया था और 1 जून 2015 से पूरे देश में इसका नामांकन शुरू हुआ। दोस्तों, यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है जो अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इस योजना में आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार योगदान करते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000, 2000, 3000 या 5000 रुपए प्रतिमाह की गारंटेड पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और खास बात यह है कि जितनी कम उम्र में आप योजना से जुड़ेंगे उतना ही कम मासिक अंशदान देना होगा। इस योजना में अंशदान की राशि आपके बैंक या डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से खुद ही कट जाती है, यानी ना तारीख याद करने की चिंता और न ही बार बार पेमेंट करने की परेशानी। दोस्तों, अटल पेंशन योजना केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। यदि किसी कारणवश योजना धारक का निधन हो जाता है तो इसके बाद नामांकित व्यक्ति को नियम के अनुसार संचित राशि दी जाती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक या डाकघर का खाता है इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक या डाकघर से संपर्क कीजिए और अटल पेंशन योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए, इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। दोस्तों, अब वक्त है गीत सुनने का, तो सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम बाजे मांदर में आज आप सुनेंगे झालाराम साहू व साथियों द्वारा गाए लोकगीतों को।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर आज आप सुन रहे थे, जिसमें गाया था झलाराम साहू और साथियों ने लोकगीतों को। और इस लोकगीत के साथ ही संपन्न होता है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। एफएम बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। 9:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और पुनः आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार 11:55 पर। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे 9:00, 11:00 और पुनः 12:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

शाम 5 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथ ही हमर गुट का पॉप टाइम आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी ड्रग्स और नशीले पदार्थ से बचे, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। साथ ही आप सुनेंगे घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:10 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर 7 बजे और पुनः 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 6:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी बरसात में दुधारू पशुओं का आधार प्रबंधन।

साथ ही आप सुनेंगे आज की नसीहत में कम जमीन में खेती का आधार हाइपोनिक्स। इसके साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:20 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। आप पुनः कार्यक्रम विवरण सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों

0: साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional response. Innovative, disruptive technology

संगवारी हो बिहान ले झिमिर झिमिर पानी हा गिरत रिस हवय, काबर की बरसात के महीना हा आगे हवय, संगे संग खेती किसानी के भी दिन आगे हवय। त संगी हो आवा सुनथन ए गीत ला, जोन ह कहत हवय झिमिर झिमिर पानी गिरे एला गइन हवय भीखम धर्माकर। औ ई गीत ला सुना चाहत हे करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मल का श्रद्धा लोचन विद्यार्थी गीतिका लक्ष्मीना सुनवानी देवेंद्र सोनवानी कृष्ण कुमार निर्मलकर उमा सोनवानी रानीगांव नगरी जिला धमतरी लेखिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल साहू नांदघाट कातल बोले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत मदनपुर कवर्धाले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू हर्ष साहू कुमकुम साहू योगेश्वरी साहू अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जयमंत्री केवट रायगढ़ राम भाटाले रोहित जयलक्ष्मी ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ बलकरण वर्मा अंजनी राजिम वर्मा ज्योति प्रहलाद वर्मा मिठमुड़ा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ ले गेंदला श्रीवास कौशल श्रीवास बिहारी पटेल लक्ष्मी पटेल लक्ष्मण वाधवानी गेंदू भाई हटौत बाजार लाहौर ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल कांकेर संबलपुर ले भागुराम यादव ज्योति यादव जसवी यादव पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ ले नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशान देवांगन लखन लाल देवांगन। तसंगी हो लोकरंजनी में आज आप मन के साथ हूँ आप मन के रेडियो संगवारी रत्नेश्वरी यादव झोका मोर जोहार और सुनाओ ए गीतला।

0: संगवारी हो बादर हा आही तभे ता पानी हा गिरही। अउ हमर अगला लोकगीत हा भी कहत हावय। ए गीत ला गईन हावय नवल दास मानिकपुरी अउ उकर साथी मन। अउ ए गीत ला सुनना चाहत हे दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, मोतीबाई मानिकपुरी, धनवंतीन बाई, योगिता बाई मानिकपुरी, गणेश धाम परसुली, खेरधा बाजार, डोंडी लोहारा, बालोदले। यह गीत ला सुनना चाहते बंगला मटिया बालोदले, सुकुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे। यह गीत ला सुनना चाहते भरी टोला डोंडी बालोदले, नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली, गौतम भाटा पारले, दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, पीपर पारा पालचो मुंगेली छत्तीसगढ़, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, ग्राम बगबुड़वा पथरिया ले, नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रणामिका औ उत्कर्ष नेताम। सुनो संगवारी मन अपन पसंद के लोकगीत ला।
1: बादर घपटे चले पवन पुरवैया।

संगवारी हो हमर अगला लोकगीत ह कहत हवय धरती के महिमा के बारे में अउ एला गईन हवय तीरथ गढ़ीवाल अउ कुंवरा बाई मार्को इकितला सुनना चाहते पुटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू सीमा साहू बाघामुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन ग्राम बेलर गांव सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन महामाया चौक मेघा पारा ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल टेकलाल पटेल बमलेश्वरी धाम साकरा सोमनेर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी साहू देवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू खपरी कुटेला भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले दुर्गा प्रसाद साहू गंगा देवी साहू चेतनलाल साहू टिकेश्वरी साहू राहुल मोहित कुमार प्रतीक कुमार साहू रेवाराम साहू कौशल्या देवी साहू गांव गणेशधाम परसुली जिला बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास औ ई गीत ला सुन चाहते समयलाल धीवर मुनि धीवर गोविंद धीवर ममता धीवर कुणाल धीवर युवांश धीवर धमनी राजीमले सुनो अपन पसंद के लोकगीत ला।

संगी हो चिरैया की मीठ बोली के तान गुरतु लागथे आउ हमर अगला लोकगीत अभी कहत हवय। आउ गीतला गईन हवय संतोष शुक्ला और उकर संगी मन। गीतला सुना चाहते शिवाजी चौक राजीम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार कृष श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता सुरुचि दिशा लवी श्रीवास्तव मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटैली नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा सुरेश कुमार सारथी कमलकांत सारथी वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी बेमेतरा ले गीतला सुना चाहते रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन सिया जैन भजन जैन शौर्य जैन शुभम जैन धरसीमा ले छिदुलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापार संतोषी नगर रायपुर ले छनुलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका नामिका बलदाऊ रानू खुशी प्रवीण साहू सी एल यादव कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयु जंघेल नंदनी जंघेल धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य जंघेल अंजलि जंघेल खमरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा सेन कौशल सेन हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव ऋचा गायत्री वैष्णव पथरिया भरे वाले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल फुलझर गटर आनी जिला गरियाबंद ले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान हर्षिता साहू कन्नेवाड़ा ले संतोष सोरी रेवती लीलाधर लक्ष्मण राजू राम उइके दादू उइके नातीराम सोरी कृष्ण कुमार पाटिल।

संगी हो अगला लोकगीतला सुनना चाहत है भागवत देवांगन पदुमलाल देवांगन सुनैना पिंकी यश देवांगन प्रियांश तन्वी नीता चंद्रपति युवराज गीता घासी मामा रामचंद देवांगन समस्त देवांगन परिवार कुष्टा पारा जुड़वा चौक सरंग पाले ये गीतला सुनना चाहते हैं पारा हिवार जिला दुर्गले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ लक्ष्मण वाधवानी विमला वाधवानी हर्ष खुशी शुभम वाधवानी कन्हैया लाल तीर्थानी डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ देवशंकर तमोरिया अजय तमोरिया डोंडी डॉली बेबी पूजा तामोरिया प्रभावित देवी तामोरिया बन बघेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ योगेश सारवा आशा सारवा नीरज नीलेश अंजलि सारवा नेहरू वार्ड भाटापारले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू देवरी भाटापारले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री हटौद बाजार लाहौदले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल रिंगनी छत्तीसगढ़ दिनेश वर्मा करुणा वर्मा सुनो संगी हो ये लोकगीतला जिला गई हमें साधरा मरावी अवकर साथी।

संगी हो, आप मन भी अपन पसंद के लोकगीत हमन तक पहुंचाना चाहत हो ता हमार पता नोट करो। हमार पता हवे shrotarayagad@gmail.com। हमार ईमेल पता ला एक बार और सुन लो, shrotarayagad@gmail.com। आप मन पत्र भी लिख सकता हो। हमार पता हवे कार्यक्रम लोक रंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिनकोड 4901। कार्यक्रम लोक रंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिनकोड 4901। अब कार्यक्रम लोक रंजनी ले डिडनेश्वरी ला देव विदा। जय जोहार, नमस्कार और सुनत रहो आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।
1: सनमपुरी और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का नाम था, अनविदा दत्त ने इसे लिखा और विशाल और शेखर का संगीत। अभी वक्त है इस प्रोग्राम में एक छोटे से अंतराल का।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेक अप सेठ से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जब भी मैट इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली माँ तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थी।

लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

0: करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।
1: hey,

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए

0: करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर की डॉक्टर बुधरी ताती भी शामिल थीं। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती है। वर्ष 1986 में इन्होंने बस्तर जिले में महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के एक केंद्र के रूप में बारसूर को स्थापित किया। इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि कृषि विभाग ने कम अवधि वाली धान के किस्मों को बढ़ावा देने के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नव रायपुर के ग्राम पलोद में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना

व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रूपये की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया जिस पर नीली बत्ती और पुलिस लिखा हुआ था। और कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य विकास किसान समृद्धि सह योजना PMKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों तथा कर्मचारियों से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुद्री ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नया रायपुर के ग्राम पलोद में 236 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही पलों के पश्चात आप सुनेंगे 10:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11 बजे और पुनः 12 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 11:55 पर।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक।

0: रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आइए जानते हैं शाम को हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:10 पर वक्त होगा कार्यक्रम पॉप टाइम का। 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात होगी ड्रग्स और नशीले पदार्थ से बचें, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। साथ ही आप सुनेंगे घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 6:20 पर, पुनः 8:30 पर एवं 10 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी बरसात में दुधारू पशुओं का आधार प्रबंधन। आज की नसीहत में आप सुनेंगे कम जमीन में खेती का आधार हाइपोनिक्स। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संडली
6: भारती,
7: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात होगी ड्रग्स और नशीले पदार्थ से बचें, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। साथ ही आप सुनेंगे घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 6:20 पर एवं पुनः 8:30 पर एवं 10 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी बरसात में दुधारू पशु का आधार प्रबंधन। साथ ही आज की नसीहत में आप सुनेंगे कम जमीन में खेती का आधार हाइपोनिक्स। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम होगा 8:20 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए जुबिन नौटियाल को।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे गाया है जयधीर ने।

0: साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुने कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आज कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव। आप सभी का कार्यक्रम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोता साथियों, आपके खत और ईमेल्स, आपके पसंदीदा गीत इस वक्त हमारे पास हैं और आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साथ ही मनहर ने, और इस गीत को लिखा है मजरू ने, संगीत दिया HD बर्मन ने। ये फिल्म का नाम है अभिमान और इस गीत को सुनना चाहते हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संत ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी पुंजराज, आर्यन आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, रुआ बांधा शनिचरी, बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन। इस गीत को सुनना चाहते खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। सुनिए अपनी पसंद पर यह गीत फिल्म अभिमान का, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मनहर ने। मजरू ने इस गीत की शब्द रचना की है HD बर्मन का, संगीत है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। इस गीत की शब्द रचना की थी वर्मा मलिक ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और इस गीत को सुना चाहते थे दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, दशरथ प्रसाद यदु, मनोज कुमार साहू। रिंगी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। और अगला गीत है फिल्म लैला मजनू से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है साहिर ने, साथ ही मदन मोहन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगेरेशी महानदी सिहाव पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी राज, एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
7: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
8: आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगला गीत सुनिए फिल्म लगान से। ये गीत है जिसे गाया सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है यार रहमान का। इस गीत को सुनना चाहता है झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी और शुभम वाधवानी, साथ ही कन्हैया लाल तीर्थानी। इसी गीत को सुनना चाहते छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, फुटानी चौक नरहन स्टेट से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर बेबी, आराध्या ललन मिश्रा, मिश्र मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन पराशर, अमित सुमित छोटू और लल्लू पंडित। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट करें। हमारा ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 4601। पता एक बार फिर से सुने, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 4601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज़ में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी। एक मनुष्य के देखने

0: समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा। नुमाइश एल्बम से पंकज उदास की आवाज है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

0: ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। अभी आप सुन रहे थे हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा और अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आबचारी बालक फरार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% प्रतिभागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर होने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति के तहत कृषि अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। नई नीति के क्रियान्वयन से प्रतिवर्ष लगभग 2,16,000 टन पेट्रोल और डीजल के समतुल्य ईंधन की आपूर्ति CBG के माध्यम से की जा सकेगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होने के साथ साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के किसानों, गौपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह नीति नए अवसर लेकर आएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आबचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तेज बारिश और गरज चमक के बीच आबचारी बालकों ने कमरे की खिड़की उखाड़ी और पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार आबचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ पर हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। गोरिल्ला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देश भर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा और अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आबचारी बालक फरार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन ने इसे संगीत

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत है।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज़ में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज़ के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है, तो हर चीज़ जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दिए हैं और कहती हैं कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज़ की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के

स्टाइल दीदी तेरा देवर दीवाना अनगिनत ड्रेस श्रृंखला है और इस सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते, काफ़ी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात ज़रूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर हम महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ, और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो, आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा, उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

ऐसा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं, इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखते हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, इसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फवे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्तु को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी। जी, वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था, पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज़्यादा अपनाया है, ज़्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं, देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा, अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए

केस में ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, फिल्म पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स, मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल, गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं, रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्ड्रोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में, फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली यही वीना रॉय ने पहनी है, और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ गागरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाए, बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, ज़रा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, ज़रा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कही, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोल कर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, वो कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें

0: के श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी, ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब, कौन, कहाँ, कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। फैशन बदलता है लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं, पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई थी? भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फ़ोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फ़ोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गए, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फ़ोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कहते हैं बॉबी के

गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मान कर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता। फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज़ की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज़ अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत। बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जवी मैट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, और जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ता

दी प्लाजो को बोला, जब ही मेट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था जी बिल्कुल। यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है, और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

कहता है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि

0: आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय

0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप

0: धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज़ है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं. संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ. और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए. नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने। बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हूँ, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपनी टीवी।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता है?
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुकी होंगी
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, भाई क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। हाँ, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
2: भी है ना। हाँ। जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
2: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
2: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250, 300, हजारों के लाइक्स होते हैं।

0: तो ये समय की बर्बादी ही
1: बिल्कुल
0: है।
1: मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहाँ थोप देते हैं।
0: हाँ।
1: और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
0: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
0: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियाँ और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियाँ होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है
0: ना? बहुत सुंदर साड़ियाँ होती है और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियाँ विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है और ये भारतीय हथकरघा विरासत

0: का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
0: ज्यादा लगता है,
1: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन के जा सकते।
0: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेती है, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
1: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
0: उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते हैं, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है
1: ना।
0: चलिए तो गीत सुन ले,
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती है।
0: और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम
0: है। वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं,

0: ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल
1: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी,
1: की भाषा का।
0: आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है, हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल

यह आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि

0: वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है आप सोचिए कि हर जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखती है कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस साल नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी और इतना सुंदर जीवन है मिला है,
1: हम खत्म कर देते जी।
0: तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है।

0: लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
1: कि गाना सुनाना चाहिए। सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सो

0: कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दें। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है, ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खा
1: सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी
0: है। अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं।

0: दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत आचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।
2: अभी न जाओ छोड़ कर

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी ना जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं।
0: तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नज़र में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन

0: से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे, और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे, और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
0: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था, और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो, और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी, और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें, और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा।

0: किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीज़न में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती है?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
1: जी।
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी। चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज़ है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को ख़ास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी। और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: कुछ अजीब थी।
1: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
2: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी ही सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
2: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव

0: को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब.
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है. हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
1: क्या
0: वो एक
1: बात है.
0: बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है।
1: ओ
0: पीला रंग लगाना
1: हम
0: सबसे मुश्किल काम है।
1: अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग. जी आगे
0: हाँ, तो
1: बताएं.
0: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है, और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी.
0: लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल. यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
0: फुर्सत
1: की
0: के रात
1: रातें,
0: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है.
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना.
0: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज़ दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह कर के भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ।
0: जी, और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है ज़रा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमैन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख कर के मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी ख़ास कलाकार थे उन

0: सब की चित्र जो है वो खरीदा करते हैं और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज़ करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे, ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो
0: मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने की प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातीस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है, तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं, तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा, तो इस तरह से मतलब काफ़ी लिखने का मेरा

0: कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी,
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी
1: जी।
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी, तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 who declined ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नज़रें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है,
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफ़ों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नज़र नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका, तो एक मैंने उसका अनुवाद किया। और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद, तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो हैं ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत

0: कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी, जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते हैं
0: ये वाला सुनता है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताया।
1: ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो

0: चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: मुश्किल होता है वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 43 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 138 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला,

0: कोटिया, कापानवा पारा, घुजापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, तेंदुचुआ, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय होगा संध्या 5:30। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 6:10 पर आप सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का वक्त होगा संध्या 7:20। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बरसात में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। सुनेगा नसीहत कम जमीन में खेती का आधार हाइपोनिक्स। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9:00 विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण और रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: श्रोताओं आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagah यानी shrotarayagad@gmail.com।

कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे

0: इंटरनेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम पॉप टाइम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत अनु मलिक का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: But hey, that's what life's about. It's like this.
5: कार्यक्रम में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं विवाह ग्रुप के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है अनुष्का और नेहा की।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वे

0: न्यूज ऐप मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं महबूब की रचना को, जिसे संगीत से सवारा है लेसर लेविस ने और स्वर है के का।

अभी आप सुन रहे थे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ईशा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हर किसी के अपने सपने हैं, अपनी मंजिल है और कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन कई बार कुछ गलत फैसले इंसान को उसकी मंजिल से बहुत दूर ले जाते हैं। ऐसा ही एक गलत फैसला है नशीले पदार्थों की तरफ कदम बढ़ाना। आज के समय में नशा एक बड़ी समस्या बन गया है। यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। बहुत से युवा और बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। इसलिए हमें इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। नशीले पदार्थ वे चीजें होती हैं जो हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, जैसे शराब, ड्रग्स, गुटखा और भी नशीले पदार्थ। कुछ लोग इनका सेवन शौक से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। बाद में वे चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते और नशे की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि इससे उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नशे का सबसे बुरा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। नशा करने से शरीर कमजोर होने लगता है। व्यक्ति जल्दी थक जाता है और उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। फेफड़े, लीवर, हृदय और दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। कुछ मामलों में नशा व्यक्ति की जान तक ले सकता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। नशा करने वाला व्यक्ति सही और गलत का फर्क समझने में कठिनाई महसूस करता है। वह जल्दी गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार गलत फैसले लेने लगता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस उम्र में हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, अपने भविष्य की नींव मजबूत करनी चाहिए, उस उम्र में अगर हम गलत आदतों में फंस जाएं, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। नशा कभी भी किसी समस्या का समाधान

और गलत के बीच का अंतर समझें। अगर कोई किसी भी तरह के नशीले पदार्थ लेने के लिए कहे तो बिना झिझक ना कहिए। याद रखिए, किसी की बात मानने से ज्यादा जरूरी है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना। अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनना जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। खेलकूद, संगीत, पढ़ाई, किताबें, नई चीजें सीखना, ये सब ऐसी आदतें हैं जो इंसान को मजबूत बनाती है। दोस्तों, अगर किसी कारण से आप तनाव या परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उसे अपने माता पिता, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। आज समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो जागरूक हों, जिम्मेदार हों और अपने साथ साथ दूसरों को भी सही दिशा दिखा सकें। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान मुश्किलों का सामना करता है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों की परेशानी, लेकिन इन समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत देगी, लेकिन यह सच नहीं है। इससे परेशानी और भी बढ़ जाती है। याद रखिए दोस्तों, जो चीज आपकी सोचने समझने की ताकत को कमजोर करे, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए और आपके परिवार से दूर करे, वह कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। वे चाहते हैं कि हम सफल बने, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है तो सबसे ज्यादा दुख परिवार को ही होता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे फैसले लेने चाहिए जिन पर हमारा परिवार गर्व कर सके। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हैं, पहला रास्ता मेहनत का, संघर्ष का और अपने सपनों को पूरा करने का, दूसरा रास्ता ऐसी आदतों का जो धीरे धीरे आपको कमजोर बनाती जाए, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप पहला रास्ता ही चुनेंगे। दोस्तों, जिंदगी में असली मजा अपनी मेहनत की सफलता में है, असली खुशी अपने परिवार की मुस्कान में है, असली नशा अगर किसी चीज का हो तो वह होना चाहिए अपने सपनों का, अपने लक्ष्य का और अपने जुनून का। तो दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। आज है महीने का आखिरी बुधवार और आज बारी रहती है क्रम घटना चक्र की।

दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के क्रम घटना चक्र में, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर या कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अंतर्गत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के नियम अपनाए, इससे स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कटौती परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने वैश्विक दक्षिण ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर भूमि संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा के लिए लंदन क्लाइमेट वीक का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही योग फॉर हेल्दी एजिंग। केंद्र सरकार ने IIT कानपुर में राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब की स्थापना को मंजूरी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और परमाणु ऊर्जा

विभाग ने चंद्र मिशनों के लिए नई तापीय तकनीक विकसित की। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत कई नई ई गवर्नेंस सेवाओं की घोषणा की। भारत और जापान के बीच हरित ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। अफ्रीकी देशों में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर बेड़े को सेवा से विदाई दी। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर नई प्रगति रिपोर्ट जारी की। हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित 6 राज्यों ने बहुउद्देश्य बांध परियोजना के लिए समझौता किया। यह परियोजना यमुना की सहायक टोस नदी पर बनाई गई। डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में FSSAI ने हेल्दी ऑर्गेनिक जीरो मैदा जैसे दावों पर कई फूड कंपनियों को नोटिस जारी किए। स्टोरिया फूड्स और मिस्टर बैक्टर्स जैसी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को टाइम 100 स्पोर्ट्स 26 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। वे इस सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय खिलाड़ी ऑलराउंडर नितेश कुमार रेड्डी चोट के कारण इंग्लैंड और आयरलैंड T20 श्रृंखला से बाहर हुए। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने 21 जून को दाम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने सार्वजनिक पार्कों को योग और स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। 22 जून को कोलकाता में INS टूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधकों को नौसेना में शामिल किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार बायोगैस नीति और अटल आजीविका हाट को मंजूरी दी। हाल ही में कोरबा वन मंडल ने मानसून के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग के साथ हाईटेक प्लांटेशन ड्राइव शुरू की। तो दोस्तों, क्रम घटना चक्र में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम तरुणों की पसंद की ओर। दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमें पहला खत भेजा है रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से, लंबोदर प्रसाद पटेल, फैलेंद्र कुमार, तेजराम, सुरेंद्र कुमार, पीयूष कृष्ण, हेमंत कुमार, रामख्याल तुलाराम, आर्यन अमान, रूप बसंत मानस, हरिशंकर देवा पटेल ने। लीजिए सुनिए दोस्तों लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज में फिल्म डर का ये गीत। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है शिव हरि ने।

दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमें अगला मेल भेजा है हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका, रेणु देवांगन ने। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। लीजिए सुनिए दोस्तों कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की सुरीली आवाज में फिल्म मासुक का ये मधुर गीत। गीत के बोल इंद्रवीर ने लिखे हैं, संगीत तैयार किया है श्याम सुरिंदर ने।

क्रम तरुणों की पसंद में हमें अगला खत भेजा है बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा लव कुमार लकी सिन्हा ने। लीजिए सुनिए दोस्तों उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आपकी पसंदीदा फिल्म तेरे नाम का ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

बस इतना ही, मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात युवाणी की अगले कार्यक्रम। सुनते रहिए आकाशवाणी रायगढ़। शुभ संध्या।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण हो रहा था। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 सुनिए का कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय होगा 6:10। कृषि चर्चा हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर। 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस।

देशकाल का वक्त होगा 6:50। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म हम दिल दे चुके सनम के नगमे, सुबह 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर का वक्त होगा 7:45। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और 11:55 पर। लोक संगीत 10:10 पर। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पुनः विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 11:00 से 11:55 तक और 12:00 से शाम 5:00 तक। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम शाम गजल आप सुनेंगे 5:10 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का वक्त होगा संध्या 5:30। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 और 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर। 6:30 पर सुनिएगा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त होगा संध्या 7:20। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अतिरिक्त आय के लिए बतख पालन के साथ एकीकृत मछली पालन। सुनेगा नसीहत, फसल उत्पादन में प्रमाणित बीज का उपयोग आवश्यक। पुनः महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आप सीधा प्रसारण सुनेंगे शाम 7:00 से 7:20 तक, 7:50 से 8:45 पर और रात्रि 9:00 से मैच की समाप्ति तक। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। संध्या के 6:10 में थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
5: रायपुर है, अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल लेबर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा बिसाय खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले लागू हो जाही। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार खातिर ग्राम सभा, चौपाल, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करे जाते। उन्हें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूह के माइलोगिन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन घलो लोगन मल्ला योजना के जानकारी देमा जुट गए हैं। उन्हें ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा लगाए जाते, जेमा गांव के लोगन मल्ला योजना के जानकारी और फायदा के संबंध में बताए जावत है। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में गांव के लोगन मल्ला मानव श्रृंखला बना के और स्लोगन ले लोगन मल्ला ये योजना ले जुड़े खातिर प्रेरित करी। ये दौरान गांव के मनखे मन पात्र परिवार ला योजना के फायदा दिवाए और ज्यादा ले ज्यादा लोगन तक एकर जानकारी अमराय के संकल्प लीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीन है कि 1 जुलाई ले लागू होवैया वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांव के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उमन बतैन की राज्य मंत्री परिषद यह योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप ला मंजूरी दे दे है। एसो अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल ले के सलाह दे है। विभाग धान के जगह मा दलहन तिलहन फसल के खेती ला बढ़ावा देबर कहे है। कृषि विभाग के मुताबिक कमती वर्षा के संभावित स्थिति मा अरहर, मूंग, उरीद, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसन फसल ले जा सकत है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक दलहन और तिलहन फसल कमती लागत में बने उत्पादन दे के संग भुइया के उर्वरा शक्ति ला सुधारे में महत्ता के भूमिका निभाते। प्रदेश के सरकारी स्कूल मन में अवैया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होही। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हो बतैन कि 1 अप्रैल ले सत्र शुरू होए ले लैका मन पहलीच ले मानसिक रूप ले तैयार होही। उमन बतैन कि लैका मन ला 1 अप्रैल ले ही किताब, स्कूल ड्रेस और साइकिल बांटे जाही। उमन यहू कहिन कि सत्र ला जल्दी शुरू करे के उद्देश्य पाठ्यक्रम ला बेरा रहत पूरा करना और पढ़ैया लैका मन के परीक्षा के नतीजा में सुधार लाना है। स्कूल शिक्षा मंत्री है बतैन कि 1 जुलाई ले सबो शिक्षक और कर्मचारी मन बर VSK ऐप मा पंजीयन और उपस्थिति जरूरी होही। जुलाई महीना के वेतन ऐप मा दर्ज उपस्थिति के आधार मा दे जाही। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल ले देश भर में वंदे मातरम कैंप लगाही। एकर उद्देश्य युवा मल्ला भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा के संबंध में समझ बढ़ाए के मौका देना ही। एमा चुने गए जिला में 20 शिविर लगाए जाही। हरेक शिविर में 15 ले 29 बच्चर आयु वर्ग के 150 युवा भाग लिही। हरेक शिविर में पूर्वोत्तर समेत 6 राज्य के युवा संघरही। मंत्रालय है यह बताया है कि कम से कम 50% प्रतिभागी मां महिला और सामाजिक रूप ले पिछड़े वर्ग के लोगन होही। पहली शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता मा काली ले लगाए जाही। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी मन के बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार ले जुड़े आने आने मुद्दा में गोट बात हुई से। ये दौरान जिला में चला संगठनात्मक काम और अभियान में लेके पदाधिकारी मल्ला दिशा निर्देश देगी। ये बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहीन। उन्हें आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के बैठक घलो हुई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा के केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था ला खत्म कर दे है। अब लुगरा बिसाए बर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता मा भेजे जाही। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े है विभाग ला निर्देश दिन है कि लुगरा के डिजाइन पहली जैसन रखे जाए जेखर ले प्रदेश भर मा एक रूपता बने रही। उन्हें लुगरा ला पसंद खुद कार्यकर्ता और सहायिका मन कर सकी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में छत्तीसगढ़ में 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता

सप्ताह मनाए जाही। ये आयोजन के तैयारी ला लेके सहकारिता मंत्री केदार कश्यप है मंत्रालय में विभागीय अधिकारी और आने सहकारी संस्था महासंघ के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके जरूरी निर्देश दीन। श्री कश्यप बतायन की हफ्ता भर तक चलैया ये कार्यक्रम में जागरूकता सहभागिता और नवाचार ला प्राथमिकता दे जाही। संगे संग लोगन ला सहकारी योजना और उपलब्धि के संबंध में बताए जाही। उमन अधिकारी मन ले कहिन की सहकारिता सप्ताह के बिरा किसान महिला स्व सहायता समूह दुग्ध उत्पादक मत्स्य पालक वनोपज संग्राहक और हस्तशिल्पी मन के भागीदारी तय करे जाए। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम होवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रईपुर में उनकर फोटो में फूल माला चढ़ा के उमल्ला सुरता करीन। ये बीरमा मुख्यमंत्री है किहिन की रानी दुर्गावती के वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास के अमूल्य धरोहर है। श्री साय है किहिन की रानी दुर्गावती के आदर्श ले प्रेरणा लेके हमल्ला विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प ला और ज्यादा दृढ़ता के संग आगू बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय पर 36वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह काली नई दिल्ली में रखे जाही। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये समारोह के अगुवाई करही। श्री मेघवाल जितैया विद्यार्थी और स्कूल ला इनाम दीही। क्षेत्रीय स्तर में प्रतियोगिता में अव्वल अवैया 20 केंद्रीय विद्यालय मन में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय घलो शामिल है। रायपुर के तिलकनगर शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्रा महिमा राजपूत के चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति शैट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुई है। महिमा 23 अगस्त ले नई दिल्ली में होवैया 8 दिवसीय शक्ति शैट कार्यशाला में भाग ली। ये मिशन में आने आने देश के 108 चुने गए छात्रा मन भाग लेवा थे। इमें सबो छात्रा मन के मिल के शक्ति शैट उपग्रह बनाही। इमले एक सैटेलाइट ला चंद्रमा के क्षमा स्थापित करे जाही। उन्हें दूसर चंद्रमा के सतह में उतरे के उद्देश्य ले बनाए जाही। यह सैटेलाइट के प्रक्षेपण इसरो कोती ले अक्टूबर मा श्री हरिकोटा ले करे जाही। महिमा के ये उपलब्धि मा रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह उमल्ला शुभकामना दिन है। अंबिकापुर जिला के बिसुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह ले पाछू संजा 11 जिन अपचारी बालक फरार हो गए। इकर उम्र 14 ले 17 बछर के बीच बताए जाते। घटना के जानकारी मिलते गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उखर तलाश में जुट गए हैं। बताया जाते कि फरार अपचारी बालक सरगुजा सूरजपुर और कोरिया जिला के रहवैया हैं। इमले कुछ एक के खिलाफ हत्या चोरी और दुष्कर्म जैसन मामला दर्ज है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के मरवाही थाना क्षेत्र में पाछू 20 जून के होए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामला में पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन व्यवसाय ला छोड़े के बदला 20 लाख रुपया के फिरौती मांगे रहीन। आरोपी मन तिरले पुलिस हथियार मोबाइल फोन और एक चौपहिया गाड़ी बरामद करे है। पुलिस आने फरार आरोपी मन के तलाश करत है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल लेबर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा बिसाई खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कारवां फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। मजरू के लिखे हुए गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव

0: और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भाई साहब, आपके
3: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत पिघलता आसमान। आइए, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के युगल स्वर में। ममता गोविंद की शब्द रचना है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: किसान भैया हो, किसान भैया हो।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: गिरफ्तार, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल स्वर में। इंदुवर की शब्द रचना है, संगीत है बप्पी लहरी का।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुन पा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में शब्द रचना को। इसे सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं।

0: कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हो
2: तू। अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्वसहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों की को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बेमित्रा जिले के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी

0: योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को 1 अप्रैल से ही पाठ्यपुस्तक गणवेश और साइकिल का वितरण किया जाएगा।
1: 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे। तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा। 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा। तो कल ही हमने बैठक में कहा है कि सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है। कल हमने बैठक में कहा है कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें।
0: स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% भागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का PM केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का डिजाइन पहले जैसा रखा जाए ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहेगी। वहीं साड़ी के कपड़े अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों और अभियानों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आज ही भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी है। विभाग ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कम पानी वाले क्षेत्रों में धान के बदले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रूपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत समर्थन मूल्य पर की जाती है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ

0: संबंधी लोगों को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रायपुर के तिलक नगर स्थित शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। महिमा 23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्ति सेट कार्यशाला में भाग लेंगी। इस मिशन में विभिन्न देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यशाला में छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की सतह पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अक्टूबर में श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। महिमा की इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 अपचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज हैं। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक चारपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना पीएम MKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। दुर्ग जिले के धमदा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जशपुर जिले में खनिज विभाग ने शंख नदी के तट पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है। इस मामले में विभाग ने 1,46,000 रूपये का अर्थदंड वसूल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही VBG रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी। और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये नगमा। आवाज़ अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास के हैं। अजीज कैशी की शब्द रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कुली नंबर 1, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। समीर की शब्द रचना है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और तुलसी कुमार के युगल स्वर में समीर के शब्द रचना को, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम हमको दीवाना कर गए।

सोनू निगम और तुलसी कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

संध्या के बेरा म चौपाल सुनैया जम्मो संगवारी मन ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान कोतिले राम राम जय जोहार। संगवारी हो चौपाल के बैठकी में आपन के स्वागत हवे। किसान भैया हो कार्यक्रम में बैठथन तो आनी बानी के ज्ञान के बात मनोरंजन के और खेती बाड़ी के चर्चा करथन। तो संगवारी हो कल के जो वर्षा है ओहर बहुत अच्छा बारिश होइस हवे। ऐसने में हमर किसान संगवारी मन के जो बूता काम है एहर शुरू हो जाही। और जोन संगवारी मन ग्रीष्मकालीन जुताई करके खेत ला बढ़िया तैयार करके रखे रहिन बहुता संगवारी मन खुर्रा बोनी भी करिन हवे तो एहर बढ़िया बतर हो जाही। संगी हो मौसम के क्रम कोती जाबो तो आज के जो अधिकतम तापमान रहिस एहर 34 अंश सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड, आर्द्रता बिहनिया रहिस 83%, जोन हर दोपहर 2 बजे घट के 63% होगी। हवे हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले एहर उत्तर ले पूरब दिशा कोती बुहात रहिस और पिछले 24 घंटा में 49.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करेगी। सवे और ये जानकारी हमला मिलते कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बोईर दादर रायगढ़ के जो कृषि मौसम वैज्ञानिक हमें ओमन के जो वैधशाला के यंत्र है वो यंत्र के हिसाब ले ये जानकारी हमला प्राप्त होते। तो संगवारी हो तो इस मौसम के हालचाल और आज बहुत अकन विषय हवे बहुत भेंटवार्ता हवे। संगवारी हो तो आज के बाद के विषय हवे बरसात में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। संगवारी हो बरसात के समय म दुधारू पशु मन बर चुनौती भरा समय होते। ये समय वातावरण में नमी होए खातिर बर चारा हर जल्दी खराब हो जाते और पशु मन में बीमारी होए के खतरा बने रहते। अगर पशुधन मन ला संतुलित आहार मिलत रहते तो दूध के उत्पादन के संग उनके स्वास्थ्य हर भी बढ़िया रहते। एकर खातिर बरसात के मौसम में दुधारू पशु मन ला आहार प्रबंधन के ऊपर विशेष ध्यान रखना जरूरी हवे। बरसात में हरा चारा भरपूर मात्रा में मिलते लेकिन बहुत अधिक गीला होए खातिर बर इला खवाए ले पाचन संबंधी समस्या घलो हो सकत है। एकर सेती हरा चारा ला थोरकुन सुखा के खवाना चाहिए। पशुधन मन ला नेपियर घास ज्वार बाजरा मक्का बरसीम जैसे पौष्टिक चारा खवाना लाभदायक होते। हरा चारा के संग सूखा चारा जैसे कि भूसा है पैरा के जो सूखा कुटी रखे रथन तो ये ला अनुपातिक मात्रा में अगर दे थन संगवारी हो तो एमे के जो पाचन है पाचन हर सही ढंग ले होते और पशु मन स्वस्थ रहते। गोरस देवैया जो पशु मन हैं इमला संतुलित दाना के मिश्रण देना जरूरी रहते। दाना में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण और विटामिन के संतुलित मात्रा में होना चाहिए। दूध उत्पादन के हिसाब ले दाना के जो मात्रा है यह तय होते। दाना के संग खनिज मिश्रण और नमक नियमित रूप ले खिलाना चाहिए जेकर ले पशु के स्वास्थ्य हर बने रही और गोरस के जो उत्पादन है यह भी बरकरार रहते। बरसात के समय में चारा और दाना के जो भंडारण है एला विशेष ध्यान रखना चाहिए। काबर कि अगर चारा हर भीग जाही या गीला जगह में रखबो तो इमें फफूंद लागे के संभावना रहते और अगर ऐसने फफूंद लग गई तो संगवारी हो इमें बीमारी होए के संभावना बढ़ जाते। एकर खातिर बहुत बढ़िया सूखा जगह में सुरक्षित जगह में हमला रखना चाहिए। साफ सुथरा पानी पशु मन पर बहुत जरूरी होते। बरसात में पानी के स्रोत हर दूषित हो सकत है जैसे कि कल बारिश गिरी हवे और जोन पशु मन माने जब बाहर चरे जात हवे तो का होते चरे के बाद ओमला पानी पीना रहते तो संगवारी हो कोई खचुआ ढंडवा के पानी ला इमन पी देते हैं जेकर ले इमन दूषित पानी ला पिए ले शरीर नुकसान हो सकत है इमन के। तो एकर खातिर पर माने विशेष ध्यान रखना है कि बरसात के समय में खास करके हमला साफ सुथरा ताजा पानी पिलाना चाहिए। अगर ऐसने करत हवन तो दुधारू पशु मन स्वस्थ रही और पर्याप्त मात्रा में ओमन दूध उत्पादन देत रहते। एकर बर समय समय में कृमिनाशक दवा देना

और पशु चिकित्सक की सलाह के हिसाब से देखभाल करना, संतुलित आहार के संग में उचित स्वास्थ्य प्रबंधन ले पशु ला स्वास्थ्य रखे जा सकत है। तो संगवारी हो ये चीज ला आप मन ध्यान दिह, जोन संगवारी मन पशुपालन अपनाइन हमें वो संगवारी मन ला हमला चेताना रथे कि कौन समय में का करना है, कैसे हिसाब से उमला खान पान ओकर रहन सहन कैसे रखना है ये चीज ला। वैसे तो हर संगवारी मन ये चीज ला जानत घलो रथे। तो ये तो रहिस आज के बात के विषय, आज के नसीहत में चर्चा के विषय हवे कम जमीन में खेती का आधार हाइड्रोपोनिक्स। संगवारी हो आज के वर्तमान समय में दिनों दिन जनसंख्या के बढ़ना और खेती योग्य भुइयां हर कम होना एक ठिन चुनौती बन गए हवे। तो ऐसे स्थिति में हाइड्रोपोनिक्स खेती हर एक ठिन आधुनिक और उपयोगी तकनीकी के रूप में उभर के सामने आए हवे। हाइड्रोपोनिक्स हर ऐसे पद्धति हवे जोन में कि माटी के बिना उपयोग ले पानी और पोषक तत्व के घोल में ही पौधा उगाए जाते। इसमें माटी के उपयोग नहीं पड़े, पोषक तत्व और पानी ये दोनों के मिश्रण ले जो घोल तैयार होते यही में पौधा उगाए जा सकते है। कम जमीन में अधिक उत्पादन ले के ये तकनीक हर धीरे धीरे किसान मन पर बहुत ही लाभदायक साबित होत हवे। हाइड्रोपोनिक्स हर हाइड्रो अर्थात पानी और पोनिक्स के मतलब कार्य होते जोन में कि पौधा के जड़ ला विशेष पोषक तत्व युक्त पानी में रखे जाते। पौधा मन ला अनिवार्य पोषक तत्व हर पानी ले मिल जाते और फसल के बढ़भार होए के बढ़िया उपज प्राप्त होते। कम भुइयां वाला इलाका शहर और घना आबादी वाला क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स खेती हर उपयोगी साबित हो सकत है। एला घर के छत, बालकनी, ग्रीन हाउस या छोटे कमरा में घलो एकर उपयोग करे जा सकत है। इस खेती में पानी के खपत हर पारंपरिक खेती के तुलना में 70-80% तक कम हो सकत है। हाइड्रोपोनिक्स पद्धति में सब्जी, फल और हरा पत्तेदार फसल जैसे कि टमाटर है, खीरा है, पालक है, धनिया है और स्ट्रॉबेरी के सफल खेती करके उत्पादन लिए जा सकत है। माटी नहीं होए खातिर बर खरपतवार और कई प्रकार के रोग कीट के समस्या कम होते। जैसे माटी में हमन खेती करथन तो माटी जैसे गीला होते तो उसमें क्या होते खरपतवार उगे के संभावना बढ़ते, रोग व्याधि होए के संभावना रहते। लेकिन इसमें माटी नहीं रहे और पोषक तत्व की घोल है एकर खातिर बर इसमें का खरपतवार नहीं होए और रोग व्याधि भी बहुत कम देखे बर मिलते। हालांकि हाइड्रोपोनिक्स खेती में शुरुआती में का होते कुछ ज़्यादा लागत हो सकत है, काबर की ओकर जो स्ट्रक्चर है और ओकर जो मशीन है ये चीज ला खरीदना है। लेकिन कोनो भी खेती में शुरू में ज़्यादा लागत लागते लेकिन धीरे धीरे जानकारी और अनुभव बढ़े के बाद लाभकारी सिद्ध हो सकत है। वैज्ञानिक तरीका ले खेती करे खातिर उत्पादन अधिक और गुणवत्ता बेहतर मिलते। धीरे धीरे सरकार और कृषि वैज्ञानिक मन घलो ये तकनीकी ला बढ़ावा देवत हवें। हाइड्रोपोनिक्स खेती हर कम भुइयां में अधिक उत्पादन ले के एक ठिन आधुनिक और टिकाई उपाय हवे। पानी के बचत बेहतर उत्पादन और कम लागत और कम जगह के आवश्यकता हर एकर मुख्य विशेषता हवे। भविष्य में बढ़त जनसंख्या के खाद्य जरूरत ला पूरा करे बर हाइड्रोपोनिक्स खेती हर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकत है। तो संगवारी हो ये चीज ला आप मन भी ध्यान रख सकत हो। और आने वाला जो समय हवे संगवारी हो का होते कि जैसे जैसे हमर जनसंख्या मन बढ़त हवे तो जम्मो कोती घर बनत हवे तो इमें का है होते खेती योग्य जो भुइयां है ये हर दिनों दिन कम हो जाते। पहले का रही हमर दादा परदादा मन रहिन तो ओमन के बहुत भुइयां रहे तो अपन हिसाब से जैविक खेती करत रहिन, गोबर खाद कंपोस्ट खाद डाल के मन बोई ला कर दें और लू के ले लाने जोन में कि कोनो प्रकार के रासायनिक दवाई भी नहीं देत रहिन। लेकिन स्थिति ऐसे बनत हवे कि भुइयां बहुत कम है और उत्पादन हमला बहुत लेना है। तो ऐसे में हमला ये नवा नवा जो तकनीकी हवे जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी इसमें का है जगह कम लागत है,

0: आओ भुइयां के आवश्यकता नहीं पड़त है, तो संगवारी मन भी एकर धीरे धीरे एकर खेती कर सकत हैं। तो एकर जानकारी रख संगवारी हो, जान के परख के एकर शुरुआत आप मन भी कर सकत हो। बखत बेरा हो चली से संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच के। तो आज के प्रश्न हवे कापी पेन लेव आउ लिख संगवारी हो। प्रश्न हवे हाइड्रोपोनिक्स का हवे, ए विषय में चर्चा करे हवन। तो एकर उत्तर लिख भेजी है, आप मन ईमेल भी कर सकत हो और चिट्ठी पत्री के माध्यम भी एकर उत्तर भेज सकत हो। और बखत बेरा हो चली से आज के किसान कोती जाए के। तो आज के किसान हमें ग्राम लामीदरहा विकासखंड रायगढ़ के कृषक चीनीलाल पटेल से गन्ना की लाभदायक खेती से आमदनी बढ़ाएं विषय में मोर बातचीत हुई से। तो चली संगवारी हो सुनबो आज के किसान। किसान भैया हो, हमारे आकाशवाणी के सार्थक प्रयास की प्रगतिशील किसान और ग्रामीण विकास, तो ये क्रम में हमन ऐसने संगवारी मंठी चर्चा करथन जोन मन की कोई भी व्यवसाय ला बढ़िया ढंग ले करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो आज हमारे बीच ऐसने जुनट्ठा किसान उपस्थित हवे जोन मन की गन्ना के खेती बढ़िया ढंग ले करत है और लाभ कमात हवे। तो संगवारी हो आवा जानबो मन की विचार ला। तो सबसे पहले किसान भैया आप मल्ला राम राम जय जोहार।
1: जय जोहार, जय जोहार भैया, आप मल्ला सब जय जोहार।
0: हाँ, तो किसान संगवारी आप मन के नाम ला बता, आप मन के गाँव के नाम बता।
1: मोर नाम है चीनीलाल पटेल है, मैं ग्राम रामीदरहा विकास खंड रायगढ़ जिला रायगढ़ के निवासी हूँ।
0: हाँ, तो पटेल जी जैसे आप मन के प्रक्षेत्र ला देखे ले ऐसे लगत हवे कि गन्ना की जो खेती है वाला बढ़िया ढंग ले करत हव, तो एकर कतक एरिया में एकर खेती करे हो?
1: मोर पर अभी जो है 30 डिसमिल में जो है गन्ना है और एकर तैयारी जो है न पहली तीन बार जो है ट्रैक्टर से जोतवा हूँ, फिर रोटावेटर से सम करवा के नाली बनवा के मैं कीचड़ मताया हूँ और एक बाद में दूधी आंख वाला जो गन्ना के पीस है वाला जो है लगाए हूँ। और लगाते समय ये ध्यान रखे हूँ कि ऊपर जो आंख है ये बाजु साइड में रहे।
0: अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
1: बाजु साइड में रखे ये फायदा होते कि ऊपर जो है अंकुरण जो है बढ़िया होते।
0: हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ, मतलब कि जो गन्ना के जो बीज है एक है हरा ना, तो बीजा ला माने उसने पत्थर के माने काटे वाला थे।
1: हाँ हाँ, एक पीस में दूधी आंख रहे।
0: हाँ हाँ,
1: अच्छा ऊपर दिखे।
0: अच्छा हाँ, मतलब कि जो आंख है कहा था वही हर ओकर माने जामही का।
1: हाँ जामही जी हाँ।
0: तो कतका अच्छा है कि आप मन इला कतका बढ़िया माने लगाए हवा कहा। हाँ, तो लगाए के बाद इन्हें और का मैं उपचार वगैरह भी करे हवा?
1: हाँ हाँ, लगाए के पहले वाला जो है ना कार्बेंडा जेम मेनको जेम के घोल में पहले डुबाए हम आधा घंटा, एक बाद में निकाल के वाला फिर जो है एमिडा प्रोपरेट की जो दवाई थे ऊपर घोल में आधा घंटा फिर डुबाए हम।
0: अच्छा,
1: एक बाद में निकाल के वाला लगा हूँ ऊपर से होते ये कीड़ा मकोड़ा और फंगिसाइड माने फंगस नहीं लग पाए और नाली में थोड़ा थोड़ा क्लोर पारी फास जो दीमक के होते।
0: अच्छा,
1: ऊपर से उपचारित करके वो जो है गन्ना के पीस में लगा है।
0: हाँ, तो पटेल जी कतका अच्छा बात कि आप मन वैज्ञानिक हिसाब से उपचारित करके ओला लगाए हवा कहा ताकि हाँ, बीमारी रोग व्याधि कम होए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
0: तो इला लगाए के बाद फिर माने का प्रक्रिया करे वाला थे?
1: एक बाद में 15-20 दिन में जो है अंकुरण में जो है ना आ जाते, एक बाद में वो में थोड़े थोड़े माटी भर देते।
0: अच्छा, हाँ, हाँ।
1: ताकि वो पर जो कंसर निकले हैं वो मन जो है मजबूती पाए।
0: हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो जैसे मिट्टी भर देन कहा।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उस समय में भी आप कुछ राखर खाद के उपयोग कर था?
1: तो थोड़े बकरी खाद और गोबर खाद और दे और पोटास खाद भी दे हूँ।
0: अच्छा,
1: पोटास खाद दे ले है ना गन्ना मीठा होते।
0: हाँ हाँ हाँ, हाँ। बटेल जी कतका माने आपन अनुभवी कह हाँ। कि कौन बतर के ओमे खाद के उपयोग करबो तो ओकर जो पैदावार बढ़िया हुई संगे संग मीठापन बने रही।
1: हाँ।
0: ये सब चीज ला माने जान के परत के
1: हाँ।
0: एकर खेती करत है कह।
1: हाँ,
0: तो ये हर कतक अवधि के फसल हवे?
1: यह तो ऐसे साल भर के फसल है लेकिन 9 महीना में ये हर पक के आपके बाजार ले जाए के लायक हो जाते।
0: अच्छा,
1: तो जैसे बैसाख वगैरह में लगा है ना वो हर एकादशी त्योहार पर
0: हाँ हाँ हाँ
1: तैयार हो जाए।

0: पटेल जी माने हमन किसान आदमी हन, किसान अगर विषा के खाही तो कैसे बनी है ना, एकर खातिर बर माने हर चीज वाला थोड़े थोड़े होले माने लगा रहा था तो घर के उपयोग होते ज्यादा हो जाते तो बेच भी देथन
1: का।
0: तो कतका अच्छा चीज है कि आप मन के घर ले लग के आप मन के पूरा बाड़ी है और पूरा खेत है कह, तो कतका बढ़िया आप मन खेती बाड़ी ला बढ़िया कर ले था, बढ़िया लाभ ले था। तो ये जो गन्ना की खेती है इसमें बढ़िया लाभ मिला थे?
1: हाँ बढ़िया लाभ मिले थे, हमन भरपूर जो है ना हमारे रिश्ता नाता सब जो है ना खुश रहते हैं आके। और कोई आ जाते तो गन्ना रस के भी पिला के जो है संतुष्टि देते हैं।
0: माने कतका अच्छा चीज है कि खुद के उत्पादन कह और ओला रस बना के अगर खुद पियत हन तो कतका ओहर माने एकदम पौष्टिकता है कह। जैसे हम विषाक पियत हन तो मैं केमिकल डली से कि का डली से अति शुद्धता कहाँ पाबो है ना, तो खुद उत्पादन करके अगर उपयोग करत हन तो कतका बढ़िया माने स्वाद भी रहते और कतका अच्छा बात है। तो पटेल जी अति बढ़िया आप मन गन्ना के खेती करे हो, बढ़िया लाभ लेत हो, तो आप मन के विचार ला हमन कार्यक्रम के माध्यम से और श्रोता संगवारी मन तक साझा करबो। तो आप मन के जैसे युवा संगवारी मन किसान संगवारी मन आप मन के विचार ला सुनत रही तो संगवारी मन ला आप मन का संदेश देना चाहिए?
1: देखा तो गन्ना के फसल ऐसे फसल है एक बार लगा था 3 साल एकर उपज जो है ना मिल थे मिल समझा। और आज जो है ना गन्ना खेती है, ऐसे खेती है एक बार लगा दे तो जो है ना 3 साल तक उन्हें जो है ज्यादा मेहनत करके जरूरत नहीं है और मांग भी एक जो है ना बहुत ज्यादा है गन्ना के नहीं समझा, दाम भी अच्छा मिलते नहीं समझा। तो मैं किसान भाई मेरे ये संदेश देने चाहता था कि जहाँ अपन पर यदि पानी की सुविधा है तो कम से कम 2 डिसमिल 4 डिसमिल में गन्ना जरूर लगाओ और ऊपर से जो है ना आप मन पर्याप्त जो है ना पौष्टिकता पूरी पाहा और आप मन के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है गन्ना है। तो मुझे यही कहना है कि जितर का साधन सुविधा है तो कम से कम 2-4 डिसमिल में गन्ना के जरूर खेती करा।
0: हाँ पटेल जी कतका बढ़िया सारगर्भित संदेश दे है, तो निश्चित रूप से आप मन के संदेश सुन के हमारे श्रोता संगवारी मन किसान संगवारी मन लाभान्वित हुई अतक सुघर जानकारी देव एक खातिर बर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद है और आप मन राम राम जय जोहार।
1: जय जोहार, आप मन जो है यहाँ आके हम लोग जो है न मौका दिया के लिए मैं आप मन के आभारी हूँ और आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हो अभी सुनत रहें संदेश और संदेश के पहले सुनत रहें आज के किसान इमन रहिन लामी दरहा विकास खंड रायगढ़ के चीनी लाल पटेल और कतका बढ़िया इमन गन्ना के खेती करिन हमें। और संगवारी हो बात बिल्कुल सच भी हवे कि हमला ऐसने खेती के चुनाव करना है जोन हर की बहुत ज़्यादा मांग रहे, तो इमन अति बढ़िया गन्ना खेती करिन है और बढ़िया लाभ लेते हैं। तो समय और बखत बेरा के हिसाब से हमला चलना है संगवारी हो, आओ आज एक भेंटवार्ता हवे। भेंटवार्ता नशा मुक्त भारत अभियान में समुदाय की भूमिका, वार्ताकार हमें सुखदेव प्रसाद पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक और भेंटकर्ता हमें रामविलास पटेल। तो चलिए सुनबो संगवारी हो आज के भेंटवार्ता।
8: संगवारी हो राम राम जय जुहार। भेंटवार्ता के आज के अंश में हमन एक विषय लेके आए हैं जो विषय बहुत ही गंभीर हावे और आज के दौर में एकर बारे में जन जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में संगवारी हो वो विषय हावे समाज कैसे नशा की गिरफ्त में

0: आवत हे, एकर बर हमन कैसे समाज ला गिरफ्त से बचा सकत हन या ओकर से हमन कैसे बचाबो एकर बारे में जानबो और एकर बारे में हमर बीच में विचार साझा करे बर उपस्थित हैं सुखदेव प्रसाद पटेल जी। ये मन हावे सेवा निवृत्त शिक्षक। ये मन से जानबो कि नशा कैसे नाश के जड़ हावे, एकर का कारण होते नशा के और नशा ले हमन बचे बर हमन का प्रयास कर सकत हन। काबर की संगियो देश भर में चलाए जात हे नशा मुक्त भारत अभियान। तो सुखदेव प्रसाद पटेल जी नमस्कार, जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: तो सुखदेव जी ये बताया कि आप मन के उम्र कतका हो गए?
1: मोर उम्र हो गए 73 साल।
0: अच्छा, और शिक्षक रहा?
1: हाँ।
0: तो आप मन से हमन जानना चाहबो कि आप मन ला लंबा अनुभव, पहली तो हर्रा बहरा कतको प्रकार के मिल जाते सिखाए पिए भर और अतका ज्यादा नशा हर नहीं रही से समाज में या तीर्थ खार में दुकान भी नहीं रही से, तो पहले भी नशा करत रही है कि अभी नशा करने बढ़ गए है?
1: पहले जैसे हर्रा बहरा आप बोले है,
0: हाँ,
1: पहले मिल जात रहीस।
0: हाँ।
1: आज भी हर्रा बहरा से ही अपन काम निपटा लेत रहीस।
0: हाँ।
1: लेकिन समय अब हर्रा बहरा के नी रगीस, आज रगे है नशा के।
0: हाँ।
1: नशा में तंबाकू है, गुड़ाखू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, दारू है।
0: हाँ।
1: ये सब से आदमी लिप्त है,
0: लिप्त है, है?
1: हाँ। और ये नशा चाहे छोटे हो बड़े हो या की भी बोले किसे, ये सब संगति से ही आते।
0: अच्छा।
1: पहले वो तो सुसंस्कृत रहते, बोला नशा के कोई अनुभव नहीं रहे।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन संगति में आ जाए के बाद में ले तो थोड़े से आज ले ले का होते।
0: हाँ।
1: तो कहत कहत में एक दिन न एक दिन वो जरूर फंस जाते।
0: फंस जाते,
1: फंसे के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी वो नशा की आदि हो जाते।
0: हाँ।
1: और आदि हो जाए के बाद छोड़े के मन नहीं करे, बल्कि दो चार ठन ग्राहक और बनाए के कोशिश कर,
0: और दूसरा आदमी
1: दूसरा भी गिरफ्त में ले लेते।
0: ले ले
1: है?
0: हाँ।
1: छोड़े के अब मन नहीं करे, एवं तो हाले ओसरी बांधते है। तो ये तम्बाकू खाने वाला है, तम्बाकू खाने वाला देखी।
0: हाँ।
1: तुरंत खाए तो वो भी निकाली अपन खाई।
0: हाँ।
1: एक,
0: हाँ,
1: गुड़ाखू घिसने वाला गुड़ाखू घिस के आए, लेकिन घिसने वाला फिर मिल गई तो तुरंत वो फिर हावी हो जाएगी।
0: हाँ,
1: है?
0: हाँ।
1: गांजा वाला है तो वो भी वही हाल है, दारू वाला है तो वो बातें नहीं है। और सबसे ज्यादा है मैं बिगाड़ के कह ले दारू।
0: अच्छा।
1: है यह सब चीज, वैसे तो जितका भी नशा है सब एवं शरीर पर हानिकारक है,
0: हानिकारक है,
1: चाहे तंबाकू हो, गुड़ाखू हो, दारू हो, चाहे गांजा हो, ये सब नशा नाश के जड़
0: जड़
1: ये शरीर ला नाश करने वाला है। मैं सब एका है नशा हर शरीर की अंग अंग में नस मन में प्रवेश कर जाते, सांस से चढ़ रही हमार आंखी में।
0: हाँ।
1: आंखी में करंट मारी, आंखी लाल लाल हो जाएगी। हाँ। लाल लाल होने के कारण वही है कि उसमें नशा के असर जो व्याप्त है, जगर खातिर आंखी के नस मन लाल लाल हो जाते, बोला सूझे गले नहीं चक्करों गले आई घी गले जाये, समझे ना, हमें आंखी की रोशनी ज्यादा दिन तक टिके हुई नहीं, वो अब खराब हुई। पेट संबंधी विकार रही।
0: हाँ।
1: नाना प्रकार के पेट संबंधी विकार रही। तो इस तरह से ये नशा जितना भी है, ये चाहे कोई भी नशा हो, यार बहुत ही हानिकारक है। जेकर से तो ये तंबाकू गुड़ाकू तो छोटे नशा है, लेकिन आदि हो जाए के बाद शरीर में तो यह बहुत बड़े हानिकारक है।
0: हाँ।
1: लेकिन दारू गांजा ऐसे चीज है कि घर में जो खाए के चावल लेते हुए आदमी धर के ले जाते, दुकान में बेच दे थे और दारू पी दे थे, घर में वो परिवार के घर वाली ये लोग लेकर है सब खाए पर भी भूखन में रहते, सरकार दे थे फोकट में तो का होते और कम पड़ थे।
0: हाँ।
1: वो तो रह देते सुना पा के सब ले जाते, बेच के खा दे थे और अपन शरीर ला भी नाश कर थे। अब बेजती करा बार कहो नहीं कहो करा गिर के पड़े है, बोला चार दिन फिर उठा के लाना थे, बेजती भी हो थे, लेकिन कहे के बावजूद भी वो आदमी वो नशा ला छोड़ना नहीं चाहे, भले ही जान चल ले तो चल ले।
0: चल ले।
1: है?
0: तो सुखदेव प्रसाद पटेल जी आप मन बहुत अच्छा बताओ कि नशा का कारण से करा थे और कैसे करा थे, उकर कैसे हमला समाज में देखे और मिले थे, लेकिन ये नशा जो हावे इला हमारे देश ले यानी मुक्त करना है, जो युवा वर्ग है ये समाज में जो नशा से लिप्त है मतलब हमला मुक्त करे बन नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जाते, तो हमर आम नागरिक के उद्देश्य का होना चाहिए, हमर का कर्तव्य होना चाहिए, हमन कैसे इला दूर कर सकत हन, नशा मुक्त भारत कैसे बना सकत हन?
1: ये तो ऐसे है ना कि एकर बार कुछ आवश्यक यह है कि सत्संगी व्यक्ति मन के होना आवश्यक है, जो की मल्ला अच्छा मार्ग के दर्शन कराए। तो जेकर से यदि

0: मन ला असर पड़ी ही तो हो सकत है ओमन छोड़ भी दी।
1: सही बात है हाँ।
0: और खाली ऐसे दिग्दर्शन करा ले ओमन के छोड़ना हर
1: मुश्किल
0: बात है। और नाना प्रकार के दवाई भी करते हैं तो आजकल दवा भी पीने ओमन के जैसे परिवार करना चाहिए छोड़ाए के तो वो कोशिश नहीं करे है। अपन परिवार ने भी नहीं देखे परिवार बिल्कुल नहीं देखे शरीर के वाला अपन स्वास्थ्य ने भी नहीं देखे सिर्फ वही आदत में ही डूबे रहना वाले ज्यादा पसंद रहते
1: हाँ।
0: गम में या तो नशा तो गम भुलाए के कोई चीज नहीं हुई यह जबरदस्ती मानसिकता है
1: हाँ।
0: गम भुलाए बार तो भगवान के कुछ भजन कीर्तन करे नाम भजन ले सत्संग करे जकर से ओकर वो चीज मन थोड़े धीरे धीरे रुक सकत है।
1: बिल्कुल
0: है?
1: सही बात
0: कोई है। अगर जहाँ सत्संग में तो कथाकार मन जरूर बोलते हैं कि आप मन में जो भी ऐसा ऐसा अवगुण है बुराई है ओला कम से कम यहाँ समर्पण करा छोड़ा है तो हो सकत है अगर दिल में यदि बैठी ही तो आदमी मन ओकर से आकर्षित होकर के भी छोड़ सकत है धीरे से
1: हाँ। यानि सत्संग करना चाहिए और अच्छा मन के मन के संग में समय व्यतीत करी तो भी एक प्रकार से ओकर में सकारात्मकता के संचार हो।
0: बिल्कुल।
1: और नशा मुक्त केंद्र भी बनाए जाते हर जिला ब्लॉक मुख्यालय में जो रहते और डॉक्टर मन भी सिफारिश करते तो वो मन के भी मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी है।
0: हाँ ये मन के मार्गदर्शन तो जरूरी है डॉक्टर मन के सलाह।
1: और क्या भूमिका हो सकते है हमारे समाज में हमारे आम आदमी की क्या भूमिका हो सकते है जैसे नशा ला दूरिया करना चाहते हैं तो और कुछ क्या कर सकते हैं हम।
0: ऐसे है ना पारा टोला में चार छह जन के जैसे घर आए उसने मतलब सब ला बैठा आपस में चर्चा करें तो अपन के लोग लेकर या अपन मतलब जितका भी है सब वो चीज के विषय में एक दूसरे अवगत कराए कि हम इसने करत हन तो हमारे घर परिवार कमजोर पड़त है हमारे स्वास्थ्य गिरत है परिवार खाए पिए में तकलीफ पात है ये सब चीज आपस में हम संगोष्ठी करें
1: हाँ।
0: आपस में
1: हाँ।
0: तो आज ऐसे हो जाते है कि वो तो करत है मैं काबर कही हाँ ओकर तो करत है लेकिन नहीं हमें चार से जन के परिवार के गोष्ठी मिल के गोष्ठी होना चाहिए आपस में
1: हाँ।
0: है
1: और
0: समाधान करे में वो में सहयोग कर सकते हैं
1: हाँ।
0: यदि आप भला तो जग भला तो इसने सब उसने समझ जाए तो धीरे धीरे धीरे धीरे यार कम भी हो सकते हैं।
1: और बहुत सारा चीज में प्रतिबंध भी लगाएगी से सरकार के डाले जो की अवैध व्यापार भी किए जाते अवैध जो खरीदी बिक्री किए जाते ऊपर भी रोक टोक प्रतिबंध लगाना और हमला बताना भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ तो ये प्रतिबंध वाली बात है तो ये खाए पिए वाली जमाना सब दारू लान के गाँव गाँव मन में बेच देते चुपके चुपके बेच देते हैं गांजा के पुड़िया बिक जाते चुपके चुपके ये सब बिक जाते जो है कि समाज भर एक ठन अभिशाप के टाइप बन जाते।
1: जी जी तो सुखदेव प्रसाद पटेल जी बहुत सुंदर अमर बीच में जानकारी साझा करा था। आखिर में कहा संदेश रही आप मन के जो श्रोता संगवारी है यह समाज ला आप मन के कहा संदेश रही नशा मुक्ति पर।
0: वो यही कहना है कि जो सियान सज्जन है सब अपन अपन पारा पड़ोस ला
1: हाँ।
0: अकेला में नहीं चार छह जन मिल जाए अकेला से नहीं हो पाए चार छह की जोड़ बना करके सब ला ये नशा की नुकसानी के बारे में मतलब अवगत कराए बताए समझाए एक जन में कोई सुनने वाला नहीं है, है?
1: समुदाय के प्रयास से नशा मुक्ति में आम जन आगू आए का
0: तो आम जन बिल्कुल हाँ समुदाय हाँ, सामने आए
1: अच्छा।
0: तब कहीं यहाँ थोड़े से सुधार में आई
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो सुखदेव प्रसाद पटेल जी बहुत सुंदर जानकारी साझा कर हमारे बीच में गोठियाव बतावा एक बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: हाँ तो संगवारी हो अभी सुनत रहें भेंटवार्ता इमन कतका बढ़िया नशा मुक्त भारत अभियान में समुदाय के भूमिका के विषय में जानकारी दीन तो निश्चित रूप से यह भी हमर श्रोता मन बर माने लाभदायक सिद्ध हो सकत है। आज के टिप के विषय हवे लागत घटाए कीट नियंत्रण की जैविक विधि अपनाए खेत बचाओ अभियान। तो संगवारी हो खेती किसानी में फसल मन ला बचाए बर कीट नियंत्रण करना बहुत जरूरी होते। आजकल किसान भाई मन रासायनिक कीटनाशक के जो अंधाधुंध छिड़काव करते हैं जेकर ले खेती के लागत बढ़ते और माटी पानी और जो पर्यावरण है ये सब हर प्रदूषित होते। ऐसे स्थिति में हमला का करना है जैविक विधि ले हमला कीट नियंत्रण करना अब्बड़ जरूरी होगी। सवे वैज्ञानिक मन के सुझाव और समय के मांग घलो हवे कि जैविक कीट नियंत्रण अगर हमन नहीं करबो

तो अवैया पीढ़ी हवे ए हर एला हमन स्वस्थ वातावरण नहीं दे सकन, पर्यावरण सही नहीं दे पान। एकर खातिर बर हमर वैज्ञानिक मन के भी सुझाव हवे, समय के भी मांग हवे कि हमला जैविक खेती करना है, जैविक कीट नियंत्रण हमला अपनाना पड़ी। जो हमन उत्पादन लेन रासायनिक खाद के अंधाधुंध छिड़काव करके उत्पादन तो बार गिस, लेकिन जम्मो कोती हमर जो वातावरण है, जो भूइयां है, ये हर प्रदूषित होत गिस। एकर ले आनी बानी के बीमारी भी देखे पर मिलत हवे। कम उम्र में बीपी शुगर जैसे बीमारी आम बात हो गिस हवे। तो ये जम्मो के ही तो परिणाम हवे रासायनिक खाद के अंधाधुंध छिड़काव हर ही। लेकिन अभी भी समय हवे हमन जैविक खेती हमन करन, जैविक कीटनाशक के उपयोग करन, तो फिर धीरे धीरे हमर जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो भूइयां है, एला हमन फिर से हमन अच्छा दे सकत हन। जैविक कीट नियंत्रण ले लागत कम होही, फसल सुरक्षित रही और मनखे के स्वास्थ्य ऊपर घलो खराब असर नहीं पड़े। जैविक कीट नियंत्रण में प्राकृतिक साधन और जीव जंतु के उपयोग करके हानिकारक कीड़ा मन ला नियंत्रित करे जाते। ये तरीका में रासायनिक दवाई की जरूरत नहीं पड़े, बहुत कम पड़ते। किसान भाई मन नीम के बीज, नीम के तेल, लहसुन, मिर्च और गोमूत्र ले बने जैविक घोल के छिड़काव करके कई तरह के कीट मन ला नियंत्रित कर सकते हैं।

कम करे जा सकत हे। जैविक खेती में फसल चक्र अपनाना, समय समय में निंदाई गुड़ाई करना और खेत के साफ सफाई करना अब्बड़ जरूरी होते। ये उपाय मन ले कीट और रोग के प्रकोप कम होते। किसान भाई मन अगर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के उपयोग करही तो एकले भुइयां हर स्वस्थ रही, संगे संग फसल मजबूत होते। तो बहुता माने का होते संगवारी हो, हमन सुनथन वैज्ञानिक मन सुझाव भी देते हैं हरा खाद के उपयोग करना है। तो एकर बर का होते खेत ला जतकी बढ़िया हमन तैयारी करबो, जैसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अगर करके रखे हन, बढ़िया खेत ला तैयारी करे हन और हरी खाद जैसे ढेंचा है, सनई है, एकर बोई कर देन और जैसे एक फीट डेढ़ फीट एहर ऊपर हुईस तो एला हमला जोताई करके खेत में छोड़ देना है। एकर अगर मॉडल देखना है संगवारी हो तो हमर कृषि विज्ञान केंद्र जो रायगढ़ में हवे, एकर बहुत अच्छा उपयोग अभी देखे बर मिली। हरी खाद के उपयोग एमन खेत में करी हमें, तो जोन संगवारी मला मौका मिलत हवे तो एकर विजिट कर देख और कृषि विज्ञान केंद्र जाके देख सकत ह। तो ए में का होई भुइयां के जो उपजाऊपन है एहर बरकरार रही और हमन का करथन संगवारी हो, खेत ला हमला बहुत अच्छा तैयारी करना है, खेत के मेड़ पार के सफाई करना है। ये सबो चीज ला अगर ध्यान में रख के हमन बढ़िया वैज्ञानिक तौर तरीका ले खेती करबो तो निश्चित रूप से बीमारी कम हुई, पैदावार बढ़िया हुई और ये चीज ला हमन ला देखे बर भी मिलते। और जोन संगवारी मन ये सब चीज ला अपनाते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित रूप से ओमन के पैदावार बढ़िया मिलत है और रोग व्याधि कम देखे बर मिलत है। तो संगवारी हो ये चीज ला आप मन भी ध्यान रख, बखत संगवारी हो बढ़िया गुरतुरा एक उठी लोकगीत सुने के। तो संगवारी हो चलबो चली सुनबो लोकगीत, फिर चर्चा ला आगे बढ़ाबो।

0: हाँ तो संगवारी हो, अभी सुनत रहें लोकगीत, एला स्वर दे रहीन चतुर साहू और कांति यादव के, और बढ़िया खेती बाड़ी के बूता काम भरदरा थे। तो आगे चर्चा के विषय हवे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान स्तंभ शिक्षा शास्त्री पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जयंती। तो संगवारी हो, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ठीन महान गायक, संगीत साधक और देशभक्ति के भावना ले भरपूर कलाकार रहिन। एकर जयंती ला हरेक बछर बड़ा ही आदर और सम्मान के साथ मनाए जाते। ये दिन यानि कि 24 जून 1897 में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के जन्म गुजरात के भरूच जिला में होय रहिस। भारत के सांस्कृति इतिहास में महान संगीतकार जोन में अपन कला और साधना ले संगीत जगत ला नावा ऊंचाई दे हमें, ऐसने ही महान विभूति में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के नाम लिए जाते। एमन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीत शिक्षक और शिक्षा शास्त्री रहिन। बचपन ले ही संगीत में एमन के विशेष रुचि रही। आर्थिक कठिनाई के बाद घलो ओमन संगीत के शिक्षा प्राप्त करिन और आगे चल के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक बनिन। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के गायन शैली बहुत ही प्रभावशाली रही। ओमन राग के भावला अतका सुंदर ढंग ले प्रस्तुत करें कि श्रोता मन मंत्रमुग्ध हो जाए। संगीत के माध्यम ले भाव भक्ति और देशभक्ति के संदेश दे में माहिर रहिन। ओकर गाए गीत और राग आज घलो संगीत प्रेमी मन के मन ला छू ले थे। एक थीन कुशल गायक होए के संगे संग महान शिक्षक घलो रहिन। अनेक विद्यार्थी मन ला शास्त्रीय संगीत के शिक्षा दे के संगीत के परंपरा ला आगू बढ़ाइन। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में ओकर योगदान हर अतुलनीय रहिस। ओकर भावना रहिस कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं होइस बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मिक विकास के साधन घलो हवे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हर भारतीय संस्कृति और संगीत के प्रचार प्रसार बर विदेश मन में घलो कार्यक्रम प्रस्तुत करिन। ओकर प्रयास ले भारतीय शास्त्रीय संगीत के ख्याति दुनिया भर में फैलिस। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान बर कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होइस। आज ओकर जयंती हर हमला संगीत के महत्व और समर्पण की भावना के संदेश देते। नवा पीढ़ीला ओकर जीवन की प्रेरणा लेके कला शिक्षा और संगीत के संरक्षण पर काम करना चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही चर्चा। अब हमठी और भेंटवाता हवे और ये मन हमें ग्राम सरिया बरपाली विकास खंड बरम किला के कृषक शंकर लाल चौहान ले कृषि के साथ कृषक दुग्ध उत्पादन से आमदनी में वृद्धि विषय में रामविलास पटेल के भेंटवार्ता हवे। तो चलिए सुनी संगवारी हो ये भेंटवार्ता ला।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आज हमन पहुंचे हन रायगढ़ जिला मुख्यालय ले 30-35 किलोमीटर के धुरिया में सरिया के किनारे में बसे गांव हावे बरपाली और बरपाली के किसान हावे हमर बीच। ओमन से हमन बात करबो कि कैसे पशुपालन से दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में आगे बढ़त है किसान और कैसे आजीविका ला प्राप्त करत है, कैसे घर चलत है, कैसे उमन के कहना चाहिए जीवन यापन होत है, एकर बारे में चर्चा करबो। हमारे बीच में उपस्थित है किसान। सबले पहले तो राम राम, जय जोहार।
2: राम राम, जय जोहार सर।
1: संगवारी आप मन के नाम बताइए जी।
2: मोर नाम शंकर लाल चौहान है सर।
1: हाँ हाँ।
2: और मैं ग्राम बरपाली के डिपा पर मोहल्ला में रहता हूँ।
1: अच्छा, सरिया लगे
2: गाँव है सर।
1: अच्छा अच्छा। तो चौहान जी ये बताया की अभी की स्थिति में देखा पशुपालन कक्षा लाभ बताओ।
2: लापरत तो है सर, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था हो थे। हाँ। चारा गाह खातिर।
1: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन अपन फिर चारा वाला भी अगर

0: लगा लेते हैं खेत में।
1: हाँ हाँ।
0: चारा से फिर हो जाता है, फिर बीज वो भी ले आता हूँ सरिया लेकर, खाना पीना की व्यवस्था जो
1: दाना का
0: दाना रहा हो।
1: तो जैसे चौहान जी कद का रखे गाय अभी?
0: दो गाय है सर, एक जर्सी है एक देसी गाय है।
1: अच्छा, जर्सी और देसी दोनों के। तो कारण का है देसी के?
0: देसी है, आप घर के दूध पी इस्तेमाल कर रहे थे सर, पिए खाए।
1: अच्छा,
0: और जर्सी ला रहे बेस्थल।
2: अच्छा, सोसाइटी है, दूध सोसाइटी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ बेस्था का। बहुत बढ़िया बात है। और दूध उत्पादन कद का हो जाते?
0: 10 लीटर हो जाते सर दिन भर में।
1: 10 लीटर हो जाते का, तो भाव कहाँ मिल जाते?
0: भाव तो वो फेट के अनुसार है,
1: डिग्री फेट के
0: अनुसार।
1: तो सेवा सहकारी समिति है?
0: हाँ, सेवा सहकारी समिति।
1: तो सेवा सहकारी समिति में जुड़े ले का फायदा होते? कुछ होते
0: दाना भी दे दे।
1: अच्छा अच्छा,
0: और समय में पैसा भी पा जाता हम।
1: अच्छा,
0: कोई मैंने इधर उधर के व्यवस्था करे पर भी नहीं लगे, हाथ हाथ पैसा है
1: सीधा, मतलब दूध ला दुहा सीधा सोसाइटी में देवा है ना। और रेंगत जाइया तो कसरत भी हो जाते
0: पास।
1: हाँ, वो तो कहा था रेंग के जा तो कसरत भी हो गए कहा तो। सुबह शाम के हवा
0: दवा
1: कहते है ना, तो गोरस भी बेचल जहाँ मन में शांति रही है ना। और एक अच्छा बात होती कि 2 रुपया आत रहे मन में, एक उत्साह के संचार होते है कि नहीं।
0: का है वो दूध के जो व्यवसाय है, हमारे घर के जो काम होते और हमारे माँ के द्वारा हो जाते।
1: अच्छा,
0: मिला बुथियार करे पर भी नहीं लगे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: और भी काम हो जाते सर।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो गाय रखे है मतलब घर में बांध के खिलाता?
0: हाँ, कबो कबो घुमाए फिर ले जाता हूँ ऐसे चारा मिलते तो।
1: अच्छा, जब
0: अभी तो दोनों फसल है तो हमारे यहाँ बरपाली में और सुविधा हो जाते चारा गाह के।
1: अच्छा, बरसा और रबी समय है तो पूरा भरे रहते खेत।
0: बीच के जो खाली समय है खेती बाड़ी के।
1: अच्छा,
0: चारा
1: कबू कबू जो जो खार मिलिस तो वहाँ ले जाओ
0: का एक दूठी वहाँ भी बांधे थन लेके।
1: अच्छा अच्छा, तो चौहान जी जैसे पशुपालन में का चीज ला ध्यान रखना पड़ते, का खिलाता पिलाता कैसे उनके दिनचर्या रही थे तेला बताओ।
0: सबसे पहले तो सुबह मतलब एक बार जो भी उनके दाना है सुबह उठते ही शाम हम रात ऐसे फूलो लो दे रहे थे, सुबह उबाल के खिला देता था। पैरा तो है का और ऐसे कोई कोई बोल दे रहा था तो अपन घास भी काट के लान देता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: और फिर थोड़ी देर बाद 10-11-12 बजे ऐसे बोले नहला देता था 10-1 बजे तक। घर में पानी वाने की व्यवस्था है सब, नल और पंखा उनका सब लगवा दे।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अगर पशु मतलब गर्मी में गर्मी से नहीं बचा, ठंडा में ठंडा से, पानी में पानी,
0: कूलर भी लगा रहे हैं सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात चौहान जी। और समय के हिसाब से उनके आहार पानी कैसे खिलाता पिलाता, दाना वाना ला कब खिलाता कैसे?
0: दाना ला सुबह खिलाता।
1: हाँ,
0: बात पहले दूल था कहा तो सुबह उठ के दाना वाना खिला के फिर थोड़ी देर में इधर घुमा फिरा के 10-11 बजे नहला के फिर दोपहर भर फिर पैरा वैरा कुटी उटी जो भी रखे हम सब खिलाता और फिर शाम को फिर एक बार दाना खिलाता।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: और इस तरह से फिर शाम को फिर एक बार दूध दो के।
1: अच्छा अच्छा,
0: करके करवा लेते हम।
1: अच्छा अच्छा,
0: रात
1: अच्छा,
0: के फिर से एक बार 3 बार दाना खिलाया था मतलब।
1: अच्छा, 3 बार खिलाता
0: पैरा घास खाते
1: छका। अच्छा, मिश्रण चलते का है?
0: चलते
1: दाना ले खिला तो भी नहीं बने ना। हाँ, हरा चारा खिला तो नहीं बने सूखा चारा। हाँ, सब मिश्रण
0: बोले रही इसकी कम से कम घंटा भर के हेर फेर रखे रही करके।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: लगातार खिलाना भी नहीं कह रही।
1: हाँ, होल डाइजेशन पाचन होना चाहिए, जुगली करी जुगाली करी तो स्वस्थ रहते हैं उनके आहार अपस्थे कहते हैं। और अभी की स्थिति में देखा जाए तो चौहान जी की खेती किसानी पर बहुत जरूरी है पशुपालन। का आप उनका गोबर खातु के?
0: बिल्कुल, गोबर खातु का इस्तेमाल करते हैं। अभी खेत में पाले नहीं चालू है काम है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: इतने आगे डाले नहीं है, बाकी गोबर ऊपर कम होते लेकिन काम आते
1: जो भी है अब। हाँ, नहीं होते हर खेत में तो कम से कम एक खेत में एक साल में। हाँ, अल्टरनेट अदल बदल के भी दिया तो। हाँ, और बछर बछर भर काम आ जाते।
0: पिछले सरकार में गोठान वगैरह कार्यक्रम में भी लेके खाद ला बेचो, गोबर ला बेचे भी है।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बात है। और सरकार जैसे समय के हिसाब से योजना नीति लाते तो हिसाब से करना पड़ते और उनमें भी हम लोग सहभागिता निभाना चाहिए। योजना बहुत ही कारगर होते, लाभप्रद भी होते और सही अगर उपयोग करते तो बहुत ही किसान व लाभप्रद आवे है ना।
0: बस थोड़ा चारागाह की समस्या है सर हमारे यहाँ में, बाकी कुछ असुविधा
1: नहीं। चारागाह समस्या तो आम समस्या है और हर एक क्षेत्र के हावे। और आजकल का है पहली जो गांव में चरवाहा रही थे से, वो नंदा के है ना, गरवा भी अटका नहीं रखा था, खाली ठौर भी नहीं है,
0: जगह नहीं है।
1: हाँ, तो एक बार का है एमपी चरी जो नेपियर घास है, बरसी में ज्वार है, बाजरा है, रक्सी है, वो सब लगा के हमला करना पड़ी। का चारा लगा था अपन?
0: वही एमपियर का नाम नहीं धरते हो?
1: एमपी चरी जो
0: चौड़ा पत्ता वाला।
1: अच्छा अच्छा, वो कर कुशियार पान जैसे।
0: कुशियार पान जैसे थे।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है चौहान जी, हमारे संग उठियाओ, बहुत सुखद जानकारी साझा करा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार सर।
3: हाँ, तो संगवारी हो अभी सुनत रहें भेंटवार्ता कतका बढ़िया मन। खेती के संगे संग पशुपालन अपने हैं और बढ़िया लाभ

थवें आगे विषय हवे भारत के पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी पुण्यतिथि संगवारी हो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कई महान नेता मन होइन जोन मन देश के विकास और जनता के हित पर महत्वपूर्ण योगदान दे हमें यही महान व्यक्तित्व में भारत के चौथा राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी के नाम लाघलो बड़े सम्मान के साथ लिए जाते। एमन एक ठिन प्रसिद्ध श्रमिक नेता स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहिन एकर पुण्यतिथि में देशवासी मन ओमन के योगदान ला याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वी गिरी के जन्म हर 10 अगस्त 1894 में ओडिशा के बेरहामपुर में हो रही। उच्च शिक्षा प्राप्त करे बर और छात्र जीवन ले ही देशभक्ति की भावना भरे रही से मन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप ले एमन भाग लेके अंग्रेज शासन के खिलाफ संघर्ष करे रहीन। वी गिरी हर मजदूर वर्ग के अधिकार बर विशेष रूप ले काम करीन एमन श्रमिक संगठन के नेतृत्व करके मजदूर मन के हित के रक्षा बर बहुत प्रयास करे रहीन। एकर सेती भारत के प्रमुख श्रमिक श्रेष्ठ नेता के रूप में इमला जाने जात रही। ओमन मजदूर मन के हक उचित मजदूरी और बेहतर कामकाजी पारिस्थिति पर संघर्ष करे रहीन। एकर सफल ट्रेड यूनियन नेता के रूप में देश भर के श्रमिक मन पर भरोसा जीतीन। स्वतंत्रता के बाद कई महत्वपूर्ण पद में इमन कार्य करीन। उत्तर प्रदेश केरल और मैसूर जोनहर की वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल रहीन। बाद में भारत के उपराष्ट्रपति घलो बनीन। बच्छर 1969 में वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में संविधान के मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य मन के रक्षा पर महत्वपूर्ण योगदान दीन। 24 जून 1980 यानी कि आज ही के दिन एकर निधन हो रही। ये दिन ला हर बच्छर ओकर पुण्यतिथि के रूप में याद करे जाते। समस्त देशवासी ओकर योगदान ला श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ओकर उत्कृष्ट सेवा और योगदान ला देख के 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ले एमला नवाजा गे रही। वी गिरी के जीवन हमला ये सिखाते कि मेहनत ईमानदारी और जन सेवा के भावना ले समाज और देश के विकास महत्वपूर्ण योगदान दिए जा सकत है। ओकर व्यक्तित्व और कृति आज घलो नवा पीढ़ी पर प्रेरणा के स्रोत हवे। एकर खातिर हमला घलो ओकर आदर्श मनला अपना के देश सेवा के मार्ग में आगु बढ़ना चाहिए। तो संगवारी हो ए तुरी चर्चा के विषय अब बखत बेरा हो चली से संगवारी हो बढ़िया गुरतुरा एक उठी लोकगीत सुने के। तो चली सुनी लोकगीत।

हाँ तो संगवारी हो, सुनत रहें लोकगीत, एला स्वर दे रहीन शेख हुसैन। और विषय हवे कृषि तकनीकी और नवाचार के लिए कृषि सखी कार्यक्रम। किसान संगवारी हो, कृषि सखी कार्यक्रम हर कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और नवाचार ला गांव गांव तक पहुंचाए के एक ठीन महत्वपूर्ण पहल हवे, जेकर उद्देश्य है ग्रामीण महिला मन ला कृषि संबंधी आधुनिक जानकारी दे के आत्मनिर्भर बनाना और किसान मन के सहायता करना हवे। कृषि सखी मन गांव गांव के महिला स्व सहायता समूह ले चुने जाते हैं और ओ मन ला खेती किसानी के नवा तकनीक, फसल प्रबंधन, जैविक खेती, पशुपालन, बीज उपचार और सरकारी योजना मन के जो विषय है ए में प्रशिक्षण दिया जाते और कृषि सखी अपन गांव के किसान मन तक ये जानकारी ला पहुंचाते और खेती में नवा नवा तकनीकी अपनाए बर प्रेरित करते, जेकर ले किसान के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और जैविक खेती हर लाभकारी बन सकते। कृषि सखी मन किसान मन ला मृदा परीक्षण, उन्नत बीज के उपयोग, कीट नियंत्रण और जल संरक्षण जैसे विषय में मार्गदर्शन करते हैं। ये कार्यक्रम हर महिला सशक्तिकरण के घलो बढ़िया उदाहरण हवे। एकल ले महिला मन के ज्ञान, आत्मविश्वास और आय में वृद्धि होते। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के संग संग

सामाजिक और आर्थिक उन्नति घलो होवत हवे। एकर संगे संग विषय रहिस कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कूटनीति में महिला मन के योगदान ला सम्मान दे बर हर एक बच्छर 24 जून यानी कि आज के दिन ला कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाते, जेकर उद्देश्य दुनिया भर के जो महिला हैं ये महिला मन ला राजनयिक मन के उपलब्धि ला पहचान मिले और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ओमन के भूमिका ला बढ़ावा देना हवे। पहले के समय में कूटनीति के क्षेत्र में महिला मन की भागीदारी बहुत कम रहिस, लेकिन आज के महिला मन अपन योग्यता, नेतृत्व क्षमता और मेहनत के बल में इस क्षेत्र में घलो महत्वपूर्ण जगह बनात हवे। महिला राजदूत, विदेशी सेवा सेवा अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मन में काम करोया महिला मन शांति, सहयोग और विकास पर महत्वपूर्ण योगदान देवत हवे। भारत में घलो कई ठीन महिला मन विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करत हवे और देश के गौरव ला बढ़ा के नवा पीढ़ी पर प्रेरणा बनत हवे। तो संगवारी हो, ये तो विषय रहिस और घड़ी के कांटा इशारा करत हवे आप मन ठेले विदा लेके। तो संगवारी हो, देव विदा। जम्मू संगवारी मल्ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान कोतिले राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:20 में लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर के स्वर में उनके हुए इस लिखे गीत को। संगीत है कैलाश परेश और नरेश का।
1: अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी।

सपना अवस्थी के गैरवेज गीत के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंतकाम का ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के हैं, राजेंद्र कृष्ण के शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत परिलाल का।

0: शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कटी पतंग, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: गोरा और काला, आइए कार्यक्रम के अंत में इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात

0: स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी।

0: मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्यूर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है।

0: मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रोड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: धरती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और फिल्म का नाम सुन लीजिए, हिमालय की गोद में।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ

0: प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए,
1: संगीतकार रवि।
0: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के, मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ, फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

0: करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।
1: हे मेरी

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छाया की।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मनहर के युगल स्वर में इंदिवर के लिखे हुए गीत को। इसे संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम होटल।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: ब्लैकमेल, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के शब्द रचना है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में

0: डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अर्पण। आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अनवर के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: बन
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर और फारूक कैसर की लिखी हुई इस गीत को, जिसे संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने, आवाजें नितिन मुकेश और साधना सरगम की। फिल्म का नाम खुदगर्ज़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में फिल्म आंदोलन का ये गीत। समीर ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में श्रोताओं आपका स्वागत है। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली के गाए हुए इस गजल को, शायर हैं मीर तकी मीर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं पलाश और दीक्षांत के लिखे हुए इस गीत को। स्वर है यूफोरिया ग्रुप का।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए

0: कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो है, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में, इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बशीर बद्र के कलाम को जगजीत सिंह के स्वर में।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं शान के गाए हुए इस गीत को। संगीत है राम संपत का।

0: रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। ऐप बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: लेकर गीत मेरे मन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों

0: बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।